ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण पूनम आहूजा के साथ। श्री रामचरित मानस का गान आप सुनेंगे बालकांड में भाग 87। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात जिसमें पूनम आहूजा आपके साथ रहेंगी। सुबह 8:45 पर पूनम आहूजा के साथ आप सुनिएगा म्यूजिकल दिल्ली।

की सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी का शेष भाग नाज शेख के साथ। सुबह 10:30 आप सुनेंगे नाज शेख के साथ अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। सुबह 11:10 पर कार्यक्रम रहेगा तस्वीर, जिसमें आज आप सुनेंगे राजस्थान में स्थित माउंट आबू के बारे में। नाज शेख इसमें आपके साथ रहेंगी। दोपहर 12:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे, जिसमें आज कुछ विषय ये रहेंगे, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग का हमारे जीवन में महत्व और अन्य विषय पर आप पूरी बात सुनेंगे। इसमें आपके साथ रहेंगी सिमरन कौर। दोपहर 1:10 का समय रहेगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल का, जिसमें आज आप कलाकार के बारे में सुनेंगे निर्देशक राज खोसला। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे देविका दत्ता। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम उन्नत किसान भाइयों का, एक कार्यक्रम है जिसमें देविका दत्ता आपके साथ होंगी और साथ में विषय रहेगा कृषि आय वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राम आसरे। दोपहर 3:10 का समय रहेगा कार्यक्रम मन भावन का, ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें रजनी मेहंदी रत्ता आपके साथ होंगी। शाम 4:10 पर रजनी के साथ आप सुनेंगे फिल्म सॉन्ग्स। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, इसमें आप 80s और 90s के गीतों का आनंद ले सकते हैं। रजनी मेहंदी रत्ता इसमें आपके साथ रहेंगे। शाम 6:10 का समय रहेगा कार्यक्रम सदाबहार गीत का, जिसमें रेणुका आर एस आपके साथ होंगी। 7:10 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसका कार्यक्रम का थीम रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। रात्रि 8:10 पर रेणुका आर एस के साथ आप सुनेंगे मधुरिमा कार्यक्रम, जिसमें आप राग और सेमी क्लासिकल और फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे मोहम्मद शमीम खान। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हर सिंगार। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का आप रिपीट ब्रॉडकास्ट सुनेंगे, और रात्रि 11:45 पर गीत मेरे मनमीत का कार्यक्रम होगा। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has become the longest-serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. The world leaders hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anuragha Kumarasinghe, in a letter said that Prime Minister Modi's vision

समय हो चला है 6:11:58। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये समय है भक्ति रस से भरपूर अर्पण का, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो सुप्रभात यानी एक नई शुरुआत, एक नई सुबह। लेकिन आज जब स्टूडियो आ रही थी तो बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे और बहुत आंधी के जो अवशेष नजर आते हैं ना, कि हर जगह पत्ते हैं, टहनियां हैं, या बहुत सब कुछ ऐसा अस्त व्यस्त सा नजर आ रहा है। लेकिन ये जो आंधी आई, ये जो बारिश आई, इस बारिश में एक जो चीज अच्छी होती है वो होती है कि सारी जो धूल जमी होती है पत्तियों पे, वो सब हट जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है वो। और ऐसे ही हमारे मन में जब ऐसी आंधी आती है, तो आंधी यानी कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी दुविधा, कोई भी ऐसा क्षण, तो हमारे मन की भी बहुत सारी गंदगी उससे धुल जाती है। मन में जमा क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत, अहंकार सब हट जाते हैं। अब क्या यह जरूरी है कि जब ऐसी आंधी आए तो ही सफाई हो, हमारे मन की सफाई? यह तो कोई जरूरी नहीं ना। तो क्यों नहीं हम हर रोज बिना इस आंधी का इंतजार किए अपनी धूल को हटाते हैं? हम हर रोज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन अपने मन को हर रोज साफ क्यों नहीं करते? और जानते हैं, इसी सफाई को बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है शौचम, जो हमारे विचारों, हमारे भावनाओं, हमारे उद्देश्य की सफाई होती है। और हमारे बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे अविश्वासों के पेड़ तब गिर जाते हैं, क्योंकि वो कमजोर थे। लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो फिर हम हमेशा ठीक रहते हैं, वैसे ही खड़े रहते हैं। इसलिए हर अवसर को जीवन के किसी न किसी एक उद्देश्य से या किसी न किसी एक सीख से जोड़ सकते हैं, जैसे सफाई। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है, या कैसे हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे मन के लिए जरूरी है, या जीवन इससे बेहतर हो सकता है, सब बात करेंगे अर्पण में। लेकिन पहले ये भजन सुनते हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी साफ सफाई की। और वैसे साफ सुथरा शब्द सुनते ही सबसे पहले हमें अपने कपड़े और घर याद आता है। लेकिन बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे कहते हैं कि जैसे बाहरी स्वच्छता महत्वपूर्ण है, और ये बात बहुत से महान दार्शनिकों ने भी कही, महान व्यक्तियों ने भी कही कि बाहरी स्वच्छता जितनी महत्वपूर्ण है उससे कहीं आवश्यक है अंदर से हम साफ हों, स्वच्छ हों। और अगर हम बार बार बाहरी स्वच्छता पर ही ध्यान देते हैं लेकिन मन स्वच्छ नहीं होता, और मन स्वच्छ होने का मतलब है कि दूसरों के लिए हम कोई कटुता ना रखें, कोई द्वेष ना रखें, कोई ईर्ष्या ना रखें, तो ये सारी चीजें ही तो मन को अशुद्ध करती हैं, वरना और क्या है जो मन को अशुद्ध करे। तो जितना अशुद्ध मन होगा उतना ही हम अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे, ना सामने वाले को। इसीलिए मन जब ऐसा नहीं कर पाता, ना वो खुद को देख पाता है ना दूसरे को देख पाता है, तो अशांत हो जाता है। और अशांत मन हमारी जिंदगी को भी धुंधला बना देता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इस स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। अब ध्यान देने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन सा अपनाते हैं, क्या करते हैं, क्या आप सोचिए। और इस भजन के बाद इस बारे में आगे बात करेंगे।

साफ सफाई की कि कैसे हम बाहर की साफ सफाई पे इतना ध्यान देते हैं, जब सफाई की बात आती है तो कपड़े याद आते हैं, घर याद आता है, लेकिन मन नहीं। और तो और आजकल तो सफाई पर इतना ध्यान देते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन पर हल्का सा दाग भी लग जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता, उसे भी साफ रखना है। लेकिन मन में पुरानी नाराजगी, कितने सालों पुरानी नाराजगी, वो भी संभाल कर रख लेते हैं। फोन हैंग हो जाए तो हम उसे क्लीन करते हैं, लेकिन मन जब हैंग हो जाता है, उसमें इतनी सारी नेगेटिविटी भर जाती है, नकारात्मकता भर जाती है, तो उसे साफ करने के लिए समय नहीं निकालते। शायद यही वजह है कि तकनीक तो आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर की शांति कहीं पीछे छूटती जा रही है। हम उसी शांति की तलाश में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वो शांति गई कहां और क्यों वो शांति जरूरी है। कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो सोचिए, फिर बात करेंगे कि शांति जरूरी क्यों है और कैसे मिल सकती है, वो स्वच्छता हम अपना कैसे सकते हैं।

बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करके ऐसा किया जा सकता है। बस आपको इसके लिए अभी अर्पण सुनना है और साथ साथ सोचते भी रहना है।

जी हाँ, मन न भय 10-20 तो एक ही मन है, और उसे ही अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जरूरी क्यों है साफ रखना? क्योंकि जहां पर सफाई होती है, स्वच्छता होती है, वहीं पर सत्वगुण बढ़ते हैं, यानी अच्छे गुण आते हैं। और जहां अच्छे गुण होते हैं, सत्वगुण होते हैं, वहीं पर हम अच्छी चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, उन्हें ग्रहण करने के लिए, उन्हें अपने अंदर समाने के लिए एक आसानी पाते हैं, हमारी स्मृति भी सहज हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्वच्छता पर ध्यान दें, आंतरिक स्वच्छता पर। जैसे एक बार एक स्कूल में एक टीचर जो थे, उन्होंने बच्चों को 2 ग्लास पानी दिया। एक ग्लास में बिल्कुल साफ पानी था और दूसरे में मिट्टी मिली थी। तो उन्होंने पूछा कि किसमें आपको आपका चेहरा साफ दिखाई देता है? बच्चों ने कहा साफ पानी में। तो टीचर बोले कि ऐसे ही अगर हमें अपने आप को देखना है तो मन को स्पष्ट होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और तभी वो शांत भी रह सकता है। अब ये सब कहना आसान है कि मन को साफ रखो, स्वच्छ रखो, ईर्ष्या हटा दो, द्वेष हटा दो, किसी के लिए कटु वचन मत बोलो, सब ठीक है। लेकिन ये सारी कहने की बातें हैं, तो ये करें कैसे? अब करना और भी आसान है। कैसे? बिल्कुल बात करते हैं इस बारे में, लेकिन पहले ये सुन लें

जी हाँ, बड़ा मुश्किल है इस भव सागर से अपने मन को साफ सुथरा निकाल पाना, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रेक्शंस हैं हर जगह। तो ऐसा ही कुछ है जो मन को धुंधला करे, गंदा करे, जो मन को स्वच्छ ना रहने दे। चाहे आप ऑफिस की बात करें या घर की बात करें, आसपास के लोगों की बात करें, रिश्तेदारी की बात करें, कोई भी, कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आती है जो हमारे मन को आहत करती है और उसकी वजह से मन थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है कि मन की सफाई के लिए थोड़ा सा सोचें, वो भी सुबह सुबह के समय, क्योंकि ये समय आपका मी टाइम है। ये समय ऐसा है जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन की सफाई करना बहुत अच्छा है, और इसी के लिए ध्यान बताया गया है, यानी मेडिटेशन, जागरूकता यानी माइंडफुलनेस, और सकारात्मक कर्म यानी पॉजिटिविटी। अगर ये सब अपना लें तो ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ये सब दूर हो सकते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो करें क्या? तो सबसे पहले तो ये कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना सीखें, यानी आत्मनिरीक्षण, कि हर दिन आपने क्या सोचा, कैसा व्यवहार किया, इसके बारे में खुद ही अपने लिए मूल्यांकन करें। ये पहचानें कि क्या मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे विचार तो नहीं पनप रहे, और ये तभी होता है जब आप ध्यान करते हैं। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करते हैं, यानी अपने आप से प्रश्न करते हैं, अपनी गतिविधियों, अपने विचारों, उनको एक साक्षी की तरह देखते हैं, एक विटनेस की तरह देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये जो विचार हैं ये उलझा नहीं रहे बल्कि आपको सुलझा रहे हैं। अगर कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो भी ये सफाई हो जाती है, कुछ अच्छा सुनते हैं तो भी ये मन के मैल को धो देता है। अगर आप क्षमा करना सीख जाते हैं तो भी मन साफ होता है, क्योंकि तब मन से द्वेष बाहर निकल जाता है। या आप मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, कुछ भी ऐसा जो हर रोज हो, इससे मन बिल्कुल साफ होने लगता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मन को साफ करने में बहुत मदद करती हैं, लेकिन इसके लिए एक सही समय चुनना जरूरी है। जैसे सुबह का समय, एक शांत जगह पर बैठना जरूरी है, जहां पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ सके, और बैठते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। इससे हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होता है, यानी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है। सांसों पर ध्यान दे सकते हैं कि शुरू में आप अंदर सांस आते और जाते महसूस करें, और जो विचार मन में आ रहा है उसे आने दें, उससे लड़े नहीं बल्कि चुपचाप उसे देखें। बस यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान करना सिखा देंगे और जो मन को साफ करने में आपकी मदद करेंगे। वैसे भी ये धूल आज की नहीं है, ये धूल तो जन्म जन्म से हमारे मन पर टिकी हुई है।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके

लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

7:10 और ठीक 58 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी गोल्ड सुप्रभात जो सुबह सुबह 7 बजे आपके लिए आ जाता है यानी समाचार खत्म होते हैं और हम पहुंच जाते हैं आपसे मिलने के लिए गोल्ड सुप्रभात लेकर और साथ ही एक उगते हुए सूर्य को लेकर। वैसे कहते हैं कि सूर्य तो हर दिन उगता है लेकिन हम हर दिन वैसे नहीं उगते क्योंकि अगर हमारे मन में कोई निराशा है कल की कोई बात है तो फिर आज वो नई शुरुआत कैसे हुई।

जो नया सूर्योदय की तरह हमारा नया उदय कैसे हुआ। इसलिए हर दिन को नया बनाने के लिए अपने कल की सारी बातों को भूलकर आज से नई बात, नया दिन शुरू कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपका बैंक बैलेंस तय करने नहीं वाला, बल्कि आपका माइंडसेट कैसा है ये तय करने वाला है। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए कि मैं परिस्थितियों का शिकार कभी नहीं हो सकता, मैं अपने हर दिन का निर्माता हूं। हर नई सुबह, हर नई ऊर्जा, हर नई संभावना हमारा और आपका स्वागत करने के लिए हर दिन तैयार होती है। सिर्फ हमें उस तैयारी में साथ साथ शामिल होना होता है। तो आज एक नई शुरुआत पूनम के साथ, और बहुत सारी बातें और भी आपसे करनी है, लेकिन पहले ये गाना।

0: and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी एक सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत की, क्योंकि वैसे तो शुरुआत हम करते हैं लेकिन अगर बुझे बुझे करेंगे तो फिर दिन नया कैसे लगेगा। अब नए दिन की नई शुरुआत के लिए हम अपने आप से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो कहते हैं ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे जरूरी होता है कि बाहर जाकर और देखें कि खिला खिला मौसम और प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वैसे ये प्रकृति जब हम देखते हैं, इसको खूबसूरती देखते हैं, तो सबसे पहले याद आता है कि सूर्योदय कब हुआ। तो आपको बता देते हैं, हम अक्सर बताते हैं हर रोज के सूर्योदय हुआ 5:23 के आसपास और सूर्य देवता जाएंगे 7:19 के आसपास। और बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, उम्मीद है। और ये जो मौसम है बेशक बदल रहा है, सब कुछ अपने आप में नया नया लग रहा है समेटे हुए, लेकिन फिर भी मौसम ऐसा है जिसमें कि आप जब घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल साथ रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड ठीक से रखें, खाली पेट तेज धूप में निकलने से बचें, छाता कैप सनग्लासेस इनका उपयोग जरूर करें। तो गर्मी है लेकिन इससे जो लड़ाई है वो ताकत से नहीं, समझदारी से जीती जा सकती है, ताकि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें और ठीक ठाक रहकर और ये प्रोग्राम जो है FM गोल्ड सुप्रभात है उसे सुनते रहें।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

7:22 और ठीक 58 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है गोल्ड सुप्रभात। और ये क्या, आप गाने सुनते सुनते इतने मगन हो गए हैं कि अभी तक आपने योगा भी शुरू नहीं किया। तो हम अक्सर आपसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट तो अपने शरीर को दीजिए। तो आज आप 10 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं? 10 मिनट में आप 5 राउंड सूर्य नमस्कार के कर सकते हैं, 1 मिनट ताड़ासन कर सकते हैं और 5 मिनट अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ये आपके शरीर को नहीं बल्कि विचारों को भी लचीला बनाता है। ये जो सुबह सुबह आदत होती है ना हमारी मोबाइल देखने की, इस आदत को कम कर दें तो ये 10 मिनट आराम से निकल भी आते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगला सवाल आपका ये है कि सुबह सुबह 10 मिनट निकालें कैसे। तो दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि अपने इरादों से करना जरूरी है। 1 ग्लास गर्म पानी सुबह सुबह लीजिए, 2 मिनट गहरी सांस लीजिए और 5 मिनट कृतज्ञता भी अपनाइए। ये भी इसी योग का एक माध्यम है या योग का एक तरीका है, योग का एक हिस्सा है। तो ये मॉर्निंग रूटीन आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा और उस शक्ति से आप पूरा दिन बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये जो आप सूर्य नमस्कार करेंगे, ताड़ासन करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप किसी योगा एक्सपर्ट से बात करके ही करें। पहले कुछ दिन उनकी उपस्थिति में करें ताकि आपको ये ठीक से करना आ जाए और फिर आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर दिन कम से कम 10 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालें ताकि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन, बिल्कुल स्वस्थ रह सकें।

जी आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये है गोल्ड सुप्रभात। और गोल्ड सुप्रभात में हमने आपसे कहा कि 10 मिनट जो है अपने आप को देने जरूरी है, यानी योग आप कीजिए और उससे आपका शरीर नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ बनता है। लेकिन अपने स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट भी आता है। हम ज्यादातर ये करते हैं कि नाश्ता स्किप कर देते हैं, जबकि नाश्ता स्किप करना या नाश्ता छोड़ देना समय बचाना नहीं बल्कि ऊर्जा गंवाना है। इसीलिए सुबह सुबह आप कुछ पौष्टिक नाश्ता लेकर निकले, जैसे पोहा ले सकते हैं, उसमें मूंगफली डाल सकते हैं, दही के साथ पराठा खा सकते हैं, ओट्स उपमा ले सकते हैं, अंकुरित मूंग ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। कोशिश करें कि आपके नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और पर्याप्त मात्रा में लिक्विड्स हों, तो इससे आपके शरीर में एनर्जी लौटती है और जो एनर्जी आप लेते हैं ना वही आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपका फोकस, आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स को याद रखिएगा और फिलहाल आपको याद दिला दें कि ये था गोल्ड सुप्रभात। पूनम चलती है लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड हमेशा सुनते रहिएगा।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: गुड मॉर्निंग विशाल एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल वेलकम अलोंग, दिस इज आज सवेरे विथ मी शगुन चोपड़ा एंड विशाल शर्मा। वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ विच वी हैव लाइंड अप फॉर यू, वेरी इन्फॉर्मेटिव स्टफ विच इंक्लूड्स नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस। फर्स्ट आवर मेट्रो सिटी अपडेट्स, वील एक्सप्लोर अबाउट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड टूडे इट्स 10th of June 2026। वील ऑल्सो एक्सप्लोर टूडेज हिस्ट्री इन ग्रेट डिटेल एंड वील ऑल्सो टेल यू वाई 10th of June इज स्पेशल। So without any further delay, let's get started with the headlines, Vishal.
0: जी शगुन, सब शुरुआत प्रमुख समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे

0: लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।
1: A meeting of the National Democratic Alliance or NDA will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP including Prime Minister Modi are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories besides the leaders of all alliance constituents.
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने देशभर में परीक्षा का सुचारू सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों मंत्रालयों ने छात्रों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
1: The Ministry of Education has issued three letters of approval to three globally reputed foreign higher education institutions. These institutes are the University of Bristol, the University of York, and University of New South Wales. The letters of approval were handed over by University Grants Commission Chairperson Dr. Vineet Joshi in the presence of Union Minister for Education Dharmendra Pradhan. Speaking on the occasion, Mr. Pradhan said that the setting up of campuses by these universities in India marks a significant step in advancing the internationalization of education vision of NEP 2020. He said that these institutions will further strengthen quality education, global learning partnerships and research collaboration in India.
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। उन्होंने बताया कि वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
1: द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स aimed at strengthening maintenance practices across national highways and expressways. So as part of the measure, National Highways Authority of India has issued comprehensive guidelines for mechanized maintenance of drainage systems in urban and built-up areas and deployment of advanced mechanized road maintenance equipment. And this includes automatic pothole filling and mechanized road sweeping machines as well. The Ministry of Road Transport and Highways said that these initiatives are aimed at improving efficiency and quality of national highway maintenance through adoption of modern technologies, also preventive maintenance practices and stricter enforcement of contractual obligations.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने मार गिराया। ये स्पष्ट नहीं है कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार खतरे में रहेंगी।
1: Now on to sports, and this is about the achievement of Bengaluru Srishti Kiran, who has become the world's number one in under 13 tennis player after winning 5 straight ITF junior titles and finishing runner-up at the ITF World Tennis Tour Juniors J100 Guatemala. So this 30

0: 18-year-old Srishti Kiran climbed to a career-high ITF junior ranking of 357, the highest among under 13 players globally. She achieved the feat despite competing in only 8 ranking events and 2 fewer than the maximum 10 tournaments which are used for ranking. How great! And this makes her ascend to the top of the under 13 rankings even more noteworthy. Srishti Kiran.
1: जी, जूनियर टेनिस में सृष्टि किरण की उपलब्धि के बाद बात क्रिकेट की. इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए. ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 और कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई. ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा. फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा. और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का. तो सबसे पहले दिल्ली.
0: एग्जैक्टली, कैन वी कैन बिगिन.
1: जी, दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी आदेश जारी किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की ओ जोन में बसी कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में कल एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण पर विध्वंस की कार्रवाई नहीं होगी. बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने ओ जोन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया. जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है. उन्होंने बताया कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने बताया है कि मॉनसून की तैयारियों के अंतर्गत नालों से गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है. प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का उद्देश्य बरसात के मौसम में पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर जल भराव रोकना, यातायात जाम कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना है. प्राधिकरण ने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण होने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीडीए अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है. उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली के बाद अब वाणिज्यिक राजधानी देश की मुंबई की बात करते हैं. महाराष्ट्र का उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग सभी जिलों में 40 सीईटी सेल छात्र सहायता केंद्र स्थापित करेगा जो छात्रों को सीईटी परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति, करियर परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे. उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कल एक समीक्षा बैठक के बाद इसकी घोषणा की. इन 40 केंद्रों में से 26 पहले से ही काम कर रहे हैं, 6 लगभग तैयार हैं और 8 जल्द ही शुरू हो जाएंगे. इन केंद्रों पर सेवाएं 10 जून 2026 से शुरू होंगी जिससे छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शहर जाए बिना प्रतियोगी परीक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना आसान हो जाएगा. बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने चेंबूर के वाशीनाका में भूस्खलन से 400 से अधिक परिवारों को बचाने के लिए एक सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु 4,46,00,000 रुपए की मंजूरी दी है. ये दीवार मिट्टी, चट्टानों और मलबे को आसपास के घरों और सड़कों तक पहुंचने से रोकेगी जिससे मानसून के मौसम से पहले सुरक्षा में सुधार होगा. और अब बात कोलकाता की. आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कल कोलकाता नगर निगम भवन में एक योग शिविर का आयोजन किया गया. इस योग सत्र का नेतृत्व योग विशेषज्ञ डॉ अभिजीत घोष ने किया और इसमें नगर निगम कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. डॉ घोष ने बताया कि योग दिवस अब 200 से अधिक देशों में मनाया जाता है और इसने विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने योग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों का भी उल्लेख किया.
0: Now we'll provide our listeners the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad, beginning with Chennai. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has said that the state would introduce drone-based patrols for the first time in India to help prevent crimes against women. So in his speech after the inauguration of Singapen, a special force in Chennai, he said that the government has

0: जी, मृत्यु के बाद अगर आंखें किसी दूसरे के जीवन में उजाला बन सकती हैं, ये इसको इसको इस बात का अगर हम एहसास करने से ही एक कितनी खुशी होती है कि अगर हम मृत्यु के बाद अपनी आंखों को दान दे जाएं और किसी के जीवन में उजाला हो जाए, इस प्रकृति को, इस दुनिया की सुंदरता को देख सके,
1: विटनेस द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड विद देयर
0: ओन
1: आईज,
0: ये भावना ही अपने अंदर एक खुशी का संचार कर देती है। तो भारत ने, अगर हम नेत्रदान की

0: भी इन प्रयासों की सफलता जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी पर बहुत हद तक निर्भर करती है।
1: एंड विशाल, आई डोनेशन इज वन ऑफ द नोबलेस्ट एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट? नॉट मेरली अ मेडिकल प्रोसीजर। एंड इफ यू प्लेज योर आईज एंड इनफॉर्म आवर फैमिलीज अबाउट आवर डिसीजन, वी कैन एक्चुअली हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द नीड फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर टिश्यूज एज वेल। And this day serves as a reminder that a simple act, very simple act of generosity, it can transform lives, right? By restoring sight to those suffering from corneal blindness.
0: इस विश्व नेत्रदान दिवस पर आइए हम सभी भ्रांतियों को दूर करके जागरूकता को बढ़ावा दें और नेत्रदान का संकल्प लें, क्योंकि जीवन भले ही समाप्त हो जाए लेकिन दृष्टि का उपहार किसी और के जीवन को रोशन कर सकता रह सकता है।
1: वाओ। एंड If you need more information, I'm talking to our listeners, for more information on eye donation and organ donation citizens, they can contact the NOTO, N-O-T-T-O, toll-free helpline at 1-800-11-4770.
0: और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो की टोल फ्री हेल्पलाइन 1-800-11-4770 पर संपर्क किया जा सकता है।
1: सो प्लेज योर आईज टुडे एंड लेट योर विजन बिकम समवन एल्सेस टुमारो, द मोस्ट नोबलेस्ट एक्ट, राइट?
0: जी, तो शगुन अब बताइए 10 जून की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास में दर्ज?
1: वेल, वी आर टेकिंग आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन सक्सेसफुली कंडक्टेड हिज हिस्टोरिक kite experiment during a thunderstorm, and this demonstrated for the first time that lightning is a form of electricity.
0: 1890 में आज के दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के श्रम नेता नारायण मेघाजी लोखंडे के प्रयासों के बाद कपड़ा मिल श्रमिकों के लिए पहली बार रविवार को साप्ताहिक अवकाश, वीकली हॉलीडे के रूप में घोषित किया था।
1: पीपल वेट फॉर
0: छुट्टी के नाम से कितनी खुशी आ जाती है चेहरे पर।
1: In 1907, the Lumiere brothers publicly introduced autochrome Lumiere in France, which became the world's first commercially successful and practical color photography technology.
0: 1935 में आज के दिन अमेरिका के एक्रोन ओहियो में बिल विल्सन और डॉक्टर बॉब स्मिथ द्वारा शराब की लत से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना की गई थी।
1: अल्कोहलिक्स एनोनिमस, राइट। इन 1966 द स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सक्सेसफुली रोल्ड आउट द डिजाइन प्लान्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सुपरसोनिक मिग फाइटर एयरक्राफ्ट एट इट्स नाशिक डिवीजन।
0: जी, और 10 जून का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986 में आज ही के दिन भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली बार टेस्ट मैच में जीत दर्ज की थी। लॉर्ड्स को शगुन क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और वहां जीत दर्ज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: बिग अचीवमेंट।
0: कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर यह इतिहास रचा था।
1: एंड इसरो In 2024, released images of solar activity captured earlier by Aditya L1's instruments. So the Aditya L1 mission was launched on 2nd of September 2023 and reached the Sun-Earth L1 point on 6th of January 2024.
0: तो इतिहास में दर्ज घटनाओं के बाद अब उल्लेख करते हैं उन व्यक्तित्वों का जिनकी आज जन्मतिथि है या आज ही के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी, आज ही इनकी पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन, उनका पूरा नाम जो है ओंकार नाथ धर था और फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बड़ी संजीदगी से इन्होंने निभाया। वैसे तो अभिनेता जीवन ने अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी एक भूमिका ऐसी थी जिसमें दर्शकों ने उन्हें देखना हमेशा पसंद किया। देवर्षि नारद के रूप में उनकी द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। अभिनेता जीवन को दर्शकों ने नारद मुनि की भूमिका में काफी सराहा। नारायण नारायण बोलते जीवन ने देवर्षि नारद के उस पौराणिक पात्र को 60 से भी अधिक फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया था।
2: नारायण नारायण, मैं भक्त भी हूँ और कर्मयोगी भी हूँ। मैं संसार के सामने ये साबित कर दूंगा कि भक्ति से एक अज्ञानी बालक भी भगवान को पा सकता है।
0: प्रमुख फिल्मों की बात करें तो दिल ने फिर याद किया, आबरू, हमराज, बंधन, तलाश, धर्मवीर,

0: चाचा भतीजा, हीर रांझा, फूल और पत्थर, बहुत फिल्मों में इन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। और धर्मवीर फिल्म से आइए सुनते हैं जीवन का एक और डायलॉग।
1: जब मेरे पिताजी ने राजपाट छीन कर मुझे दरबदर कर दिया था, उस सब पाप का एहसास किसी को हुआ था? अब मेरा बेटा राजकुमार बनेगा और ये नवाब ज्यादा उसकी गुलामी करेगा। मेरे बेटे के सर पर मुकुट रखा जाएगा और ये नवाब ये जूते साफ करेगा और मैं चैन की नींद सोऊंगा।
2: Wow, such an expressive voice it is. We were telling you about Jeevan. Listeners, today we are also remembering pioneering singer, songwriter and pianist Ray Charles. One of the most influential artists of all times, Charles pioneered the sound of soul music with his blend of R&B, jazz, blues, gospel. And in the 50s and 60s, Charles broke several glass ceilings as an artist, and he found crossover success on the pop charts as well. Charles won 18 Grammy Awards, and this includes a Lifetime Achievement Award and 5 posthumous awards as well. Let's listen to one of his creations, I Believe to My Soul.

0: आज ही पुण्यतिथि है जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अभिनेता गिरीश कर्नाड की। गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में ययाति, तुगलक, हयवदन, अंजु मलिग्गे, अग्निमतुमाले, नागमंडल अग्नि और बरखा बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं इनके। गिरीश कर्नाड ने ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया था और ये काफी लोकप्रिय भी हुए इनके लिखे नाटक। नाटक तुगलक से गिरीश कर्नाड को बहुत ही प्रसिद्धि मिली और कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया।
1: वेल राइट, गिरीश कर्नाड, द प्रोमिनेंट एक्टर, प्ले राइट स्कॉलर, हिज लेगेसी एज अ प्ले राइट एंड एक्टर इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। And whether it was his memorable roles in movies such as Nishant, Manthan, you were also telling about it. Well, his versatility as an actor and writer, it was unmatched.
0: So, आइए सुनते हैं गिरीश कर्नाड की अभिनीत फिल्म का एक डायलॉग।
1: Sure.
2: आप मेरी शिकायत दर्ज करेंगे कि नहीं? कोई गवाही है? क्यों नहीं? सारे गांव ने देखा है।
3: क्या को गांव वालों को गवाही को बुलाओ?
2: कृष्णा, चलो तुम्हें गवाही देनी। सुनो, तुम गवाही नहीं दोगे तो मेरी शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। यादगिरी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं दूसरे गांव का हूं, इसलिए मेरी मदद भी नहीं करोगे? ठीक है, नको करूं मदद। मैं तालुके थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैं कानून जानता हूं।
0: और गिरीश कर्नाड को मिले सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसके अलावा 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया, 1998 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी इनको दिया गया और 1998 में कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। और इसके अलावा गिरीश कर्नाड को कन्नड़ फिल्म संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।
1: Wow, we are remembering गिरीश कर्नाड। Listeners, today we are also remembering भाई वीर सिंह, the poet, scholar and theologist of the Sikh revival movement, playing an important part in the renewal of Punjabi literary tradition. Well, very important figure of the Singh Sabha movement and is considered the father of modern Punjabi literature.
0: जी, भाई वीर सिंह की प्रसिद्धि कवि के रूप में अधिक है। राणा सूरत सिंह, लहरा देहार, प्रीत वीणा और कंब की कलाई, कंत महेली और साइया जियो इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। पंजाबी साहित्य और कविता लेखन के क्षेत्र में भाई वीर सिंह को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और अब बात करते हैं जयंती और जन्मतिथि की। आज जन्मतिथि है, आज के दिन जन्म हुआ था MS गोपाल कृष्णन, जाने माने वायलिन वादक भारत के। गोपाल कृष्णन ने 7 दशक तक वायलिन के सुरों से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा था। इनके पिता भी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे और कुशल वायलिन वादक भी थे इनके पिता, और उन्हीं से उन्होंने सीखा भी। MS गोपाल कृष्णन को कर्नाटक संगीत, दक्षिण भारतीय और हिंदुस्तानी संगीत, उत्तर भारतीय दोनों का ही बहुत ही गहरी

0: उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों

0: में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के

0: Longest serving elected Prime Minister of India, world leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Gambola. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जीरामजी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वजीर आजम मोदी की लगातार मुद्दतेकार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जुग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क्यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वजीर आजम मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी का एक मामूली समाजी और इक्तसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि खानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और यह भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کے دوران تقریباً 25 کروڑ بھارتی افراد غربت کے دائرے سے باہر نکلے اور لوگوں نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی توسیع بڑے پیمانے پر بنیادی

0: की तवक्को है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकज ने मुल्क में देही तरक्की को आगे बढ़ाने के मकसद से 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने एमजी नरेगा के तहत 30,000 करोड़ रुपए पहले से ही मुख्तस किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692 करोड़ रुपए की एक उबूरी रकम जारी की गई है। इसके साथ ही कुल रकम 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जनाब चौहान ने यह बात रियासती देही तरक्की के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत के बाद कही। यह मीटिंग विकसित भारत जीरामजी पर अमल दरामद के बारे में थी। मुल्क में इस कानून का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरेक मिनाब बंदराबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गई। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाकवामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इनकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो

वक्त हो चला है 8:45 और ठीक 56 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी जिसे आप सुनते हैं या तो घर पर या फिर रास्ते में या फिर बस ऑफिस पहुंचने ही वाले होते हैं तब। वैसे ऑफिस की बात करें तो दिन भर की मीटिंग्स, सैकड़ों मैसेजेस, अनगिनत ईमेल्स, और फिर भी शाम को ऐसा लगता है कि आज तो कुछ खास हासिल हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक भ्रम है कि अगर हम बहुत ज्यादा बिजी हैं ना तो हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि व्यस्तता जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप से पूछें कि क्या जो मैं आज कर रहा हूं या कर रही हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लेके जा रहा है या दूर। तो हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं, हर कॉल उतनी महत्वपूर्ण नहीं, हर भाग दौड़ हमें प्रोग्रेस की ओर या प्रगति की ओर नहीं लेकर जा रही होती। जरूरी ये होता है कि थके बिना वो काम करें जो आपके उद्देश्य के लिए जरूरी है और आपको उस उद्देश्य के करीब लेके जा रहा है। बस ऐसी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से। और ये प्यारा गाना मैं आपके लिए ले आई बहुत चुनके।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख।

0: थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और यह है म्यूजिकल दिल लगी। अब जब बात हो रही थी बाहर निकलने की कि ऑफिस के लिए भी आप निकलते हैं, किसी काम से भी सुबह सुबह निकलते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है इस समय में कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी जो है वो चरम पर है और ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सिरदर्द है, कमजोरी है या उलझन महसूस हो रही है, तो इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कुछ सावधानियां आप जरूर बरत सकते हैं, जैसे हर 30 मिनट में पानी पिए, बाहर निकलते समय सिर को ढके, खाली पेट धूप में जाने से बचें, और कैफीन या बहुत मीठे पेय इन्हें थोड़ा सा लिमिट कर दें, थोड़ा सीमित कर दें। आप छाछ ले सकते हैं या आप नारियल पानी पी सकते हैं, इस तरह के जो नेचुरल चीजें हैं ना, ये बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा करके आप अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, और आप ठीक रहेंगे तो ये जो गाने हैं इन्हें भी एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ ऑफिस में भी वो काम करेंगे जिसमें आपका मन लगता है। हमने अभी बात की थी ना कि प्रोडक्टिविटी जो है वो जरूरी नहीं है कि बिजी रहने से हो। प्रोडक्टिविटी मतलब कि आप जो करें उसे दिल लगाकर अच्छी तरह से करें।

और चलते चलते एक छोटी सी बात कि आज के दिन आप टू डू लिस्ट को बदलकर मस्ट डू लिस्ट से रिप्लेस कर लीजिए। बस वही कामों की एक लिस्ट बनाइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है और फिर देखिए कि आप शाम तक बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और बहुत खूबसूरती से दिन को बिताएंगे। तो फिलहाल पूनम चलती है लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रहेंगे एफएम गोल्ड के साथ ही। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद नाज रहेंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल्लगी के सफर को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल की, जहाँ ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक गीत। तो कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम एनर्जेटिक और साथ में होगा आज का सवाल भी, जिसका जवाब आप देंगे कहाँ और कैसे ये भी तो सुन लीजिए। fmgoldair@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेज देंगे 9868687 पर। और फिर क्या करेंगे, झूम के नाचेंगे इस अगले गाने पर और फिर जल्दी से लौट कर वापस भी आएंगे। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तब तो और भी अच्छी बात है। उठाइए प्लेट और तसल्ली से कीजिए नाश्ता विद मी एंड म्यूजिकल दिल लगी।

हां जी, तो अर्ज किया है कि आंखों के आगे जैसे त्योहार गुजरता है, आंखों के आगे जैसे त्योहार गुजरता है, तेरा चेहरा दिन में जितनी बार गुजरता है, तुझसे मिलके मेरी रोजी रोटी चलती है, तुझसे मिलके मेरी रोजी रोटी चलती है, और तुझे न देखूं तो दिन बेकार गुजरता है। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यानी नाज आ गई हूँ आपके दिन की शुरुआत को एकदम बढ़िया बनाने। प्यारे प्यारे गाने होंगे, साथ में होगी कुछ अहम जानकारियां भी आज के दिन यानी 10 जून से जुड़ी। लेकिन इस सब से पहले आज का सवाल, तो भाई आज आप बताइए उस इंडियन मेल प्लेबैक सिंगर का नाम जो आते हैं जामनगर के आदित्य घराने से। और एक हिंट आपके लिए ये है कि आज यानी 10 जून को ये मना रहे हैं अपना जन्मदिन। और भी हिंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे और म्यूजिकल दिलगी के साथ। अभी एक और खूबसूरत ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए, और आप करेंगे ये कि गाना एंजॉय करते हुए जल्दी से लिख भेजेंगे आज के सवाल का जवाब।

अब देखिए, बच्चों की पड़ गई हैं समर वेकेशंस, और ऐसे में श्रीमती जी को मायके जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। कोई झूठ कोई सच कुछ नहीं कर पाएगा। काम आएगी तो शायद मेरी एक नसीहत कि अगर खुश रहना चाहते हैं तो पहले दिल की सुनिए, उसके बाद गौर कीजिए कि आपका दिमाग क्या कहता है, और फिर करिए वही जो श्रीमती जी कहती हैं, उसी में भलाई छिपी है जनाब। और अभी जानिए आज के दिन यानी 10 जून से जुड़ी कुछ खास बातें, जिनमें सबसे पहले बात इटली की, जो आज ही के दिन साल 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद एक रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक राष्ट्र बना, और इससे पहले साल 1848 में आज ही के दिन यानी 10 जून को न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच शुरू हुआ था पहला टेलीग्राफ लिंक। और क्या है वो बातें जो आज के दिन को बनाती हैं खास, जानेंगे, लेकिन पहले ये गाना सुनेंगे।

0: देखिए भाई, दिल लगाना भले ही मुश्किल हो एक बार के लिए, लेकिन जो काम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वो है आज के सवाल का जवाब देना, जो अब से कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था। क्या हुआ, सवाल सुन नहीं पाए? कोई बात नहीं, मैं फिर से पूछ लेती हूँ। गायकी से पहले जिन्होंने जमाई तबले की ताल और कई कार्यक्रमों में निभाया अनूप जलोटा जी और जगजीत सिंह जी का साथ, और फिर जब चलाया अपनी आवाज का जादू तो अलग, मतलब सबसे अलग सुनाई दिए वो। 80 के दशक से की प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत, लेकिन उससे पहले ही बन गए थे बतौर गजल गायक सबकी पहली पसंद। और सबसे बड़ा हिंट कि आज ही के दिन यानी 10 जून को हुआ था उनका जन्म। साल था 1969 और जगह थी माया नगरी मुंबई। और जनाब, बता दूं आपको कि खूब सारे जवाब हम तक पहुंच रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर सही हैं लेकिन कुछ गलत भी हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 10 जून की तारीख पर आप जोर दे रहे हैं, उस पर ही गौर फरमा रहे हैं। बाकी जो हिंट्स मैं आपको दे रही हूं उन्हें भी तो ध्यान से सुनिए। 10 जून को और भी सिंगर्स का जन्म हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन और हिंट्स और जो जानकारी मैंने आपके साथ बांटी है उसके हिसाब से दीजिए आज के सवाल का जवाब, है ना?
1: हंसो मत, बोलो।
0: तो देखिए ना, इतने सारे हिंट्स देकर मैंने आपकी मुश्किल तो कर दी ना आसान, और अब आप भी जरा तेजी दिखाइए और

जल्दी से भेज दीजिए सही जवाब कहाँ और कैसे, ये भी याद दिला देती हूँ। नए लिसनर्स को भी बताना जरूरी है भाई कि fmgoldair@delhi@gmail.com पर करना होता है आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप करना चाहते हैं। तो हमारा नंबर है 9868686875। पर बातें रहेंगी जारी आज के दिन से जुड़ी। अभी सुनिए म्यूजिकल दिल लगी की प्लेलिस्ट से ये अगली कड़ी।

0: पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

बात करूं तो कैसे करूं। अब वो रातों को सो जाते हैं और दिन को मसरूफ हो जाते हैं। वैसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, बस हमसे करते हैं ये कहना भूल जाते हैं। तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि अगर कोई बात दिल में आकर जुबान तक ना आ पाए तो उस बात के कोई मायने नहीं रह जाते। तो जिससे जो कहने की ख्वाहिश है बिना देरी कह डालिए, लेकिन कहने से पहले थोड़ा सा सोचिए और समझ भी जरूर लीजिएगा कि कहीं आपके शब्दों का चयन या फिर आपकी बात में छुपा आपका नजरिया सामने वाले को ठेस तो नहीं पहुंचा देगा। और ठीक यही संदेश देता है हमें आज का दिन भी, जिसे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस खास दिन को यानी आज के दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर की थी। और मकसद क्या था इसके पीछे? बस यही कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की अनूठी उपलब्धियों को मानवता की सामूहिक विरासत में संजोकर समेटकर एक साथ देखा जाए और उसे स्वीकार भी किया जाए। आसान शब्दों में कहूं तो धर्म, जाति या फिर भाषा भले ही अलग अलग क्यों ना हो, किसी तरह के भेदभाव को मन में ना लाते हुए एक दूसरे का सम्मान करना हमें आज का दिन सिखाता है। और कुछ यही बात ये अगला गाना भी तो कहता है हमसे।

छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए अच्छी, ये तमन्ना है हर किसान की। और कहा तो सच ये भी कहा गया है कि हाथों के छाले उसके सफलता की निशानी है, हाथों के छाले उसके सफलता की निशानी है, खेतों की मिट्टी ही उसकी अपनी कहानी है। महलों की चाहत तो उसे कभी होती ही नहीं, उसके लिए तो बस उसके खेतों की हरियाली ही उसकी जवानी है। और भारत के यही मेहनतकश किसान किसी कमी से ना जूझें, ये सुनिश्चित करने का काम करती है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो भारत सरकार द्वारा देश के उन जिलों के कायाकल्प का जिम्मा उठाती है जहां कृषि के नजरिए से उत्पादकता कम है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सफल मॉडल पर आधारित ये योजना करीब 36 मौजूदा केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण है, जिसके बजट का 40% हिस्सा कृषि सब्सिडी के लिए, 30% हिस्सा बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 20% हिस्सा ऋण यानी लोन के लिए, साथ ही 10% हिस्सा प्रशिक्षण और बाजार सहयोग के लिए निर्धारित है। कम पैदावार वाले इलाकों में किसानों को आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाने से लेकर अनाज के भंडारण और जरूरत के हिसाब से लोन

उपलब्ध करवाने तक ये योजना हमारे किसान भाइयों का साथ निभाती है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ सरकार के स्तर पर ही होना चाहिए? हम अपने लेवल से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे किसान भाइयों को धन और धान्य की कमी ना हो? सोचिए। सबसे पहले तो उस खाने की कद्र करें जो हमें किसानों की दिन रात की मेहनत से नसीब होता है। खाना वेस्ट तो किसी सूरत में ना करें और जितना हो सके अपनी जमीन, अपने किसान भाइयों से जुड़कर उनकी मदद करते रहें। और फिलहाल सुनते रहें म्यूजिकल दिल लगी मेरे यानी नाज के साथ इस अगले ट्रैक के बाद भी।

कहते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत करनी हो तो उसकी आंखों से करो, क्योंकि वक्त के साथ जुल्फें सफेद पड़ जाती हैं, चेहरे का निखार मुरझा जाता है। वक्त के साथ कहां सब कुछ वैसे का वैसा रहता है। मगर आंखें, आंखों की खूबसूरती और उनकी गहराई कभी कम नहीं होती, बल्कि जिंदगी का तजुर्बा, संघर्ष आंखें ही तो बयां करती हैं। तो रखिए अपनी आंखों का अच्छे से ख्याल, और हो सके तो अपनी आंखों को किसी और की जिंदगी को रोशन करने का जरिया भी आप जरूर बनाइएगा। ये भी कहता है आज का दिन यानी 10 जून, जिसे विश्व नेत्रदान दिवस यानी वर्ल्ड आई डोनेशन डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। मरणोपरांत यानी दुनिया को हमारे अलविदा कहने के बाद कोई और जरूरतमंद हमारी आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को और इसके अनगिनत

रंगों को निहार सके। यही संदेश आज का दिन हमें देता है। जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, भले ही आप चश्मा लगाते हों, मोतियाबिंद, ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की बीमारी से जूझ रहे हों। हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। सिर्फ एड्स, हेपेटाइटिस बी या फिर सी और रेबीज या फिर ब्लड कैंसर ही कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता। दरअसल नेत्रदान जब आप करते हैं ना, तो पूरी आंख का ट्रांसप्लांट नहीं होता है, बल्कि आंख के सिर्फ सामने वाली पारदर्शी परत यानी कॉर्निया का इस्तेमाल किया जाता है। और बस यही दान किसी की पूरी जिंदगी रोशन करने के लिए काफी है। तो मत भरोसा कीजिए किसी भी मिथ या कही सुनी बात पर। सही जानकार से मिलिए और नेत्रदान के जरिए अपनी आंखों को किसी और के लिए सहेज कर और संभाल कर रखिए। और अभी क्या कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनकर खो जाइए इस खूबसूरत से ट्रैक पर।

और अब आज के सवाल का सही जवाब क्या है? वैसे तो आप सभी लिखकर भेज चुके हैं, लेकिन जैसी है रवायत, थोड़ी सी जानकारी के साथ बताऊंगी आपको कि रूप कुमार राठौर, जी हाँ, यही है वो शख्सियत जिनका आज यानी 10 जून को है जन्मदिन, और जो एक कमाल के सिंगर होने के साथ साथ कुशल तबला वादक और बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। गजल, शास्त्रीय संगीत, सूफी कलाम या फिर रहे हो बॉलीवुड के गाने, रूप कुमार साहब की रूहानी आवाज सीधा हमारी रूह तक गई है ना? इनके पिता चतुर्भुज राठौर एक मशहूर ध्रुपद गायक थे, मसलन संगीत उनके खून में बहता है। 80 के दशक से ही इन्होंने गायकी में खुद को आजमा लिया था, लेकिन असल पहचान 90 और उसके बाद इन्हें हासिल हुई। तो फिर चलिए उन्हीं का गाया एक बेहतरीन गाना मैं आपको सुनवाऊं, उससे पहले मैं लूंगी वो सभी

जिन्होंने दिया आज के सवाल का बिल्कुल यही और सही जवाब। तो जनाब नवीन भाटिया साहब ने हर रोज की तरह दिया सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब मोतीनगर नई दिल्ली से। सुमित सिन्हा जी दिल्ली से इसके बाद दूसरे नंबर पर थे सही जवाब भेजने वाले। सुशील आर पठानिया हिमाचल प्रदेश से, लखमीर सिंह पातलान कैथल हरियाणा से, राजा आर नई दिल्ली से, मधु किरण जी ने भी आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब भेजा लेकिन कहां से भेजा ये लिखना भूल गई शायद। सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से इन्होंने भी बिल्कुल शत प्रतिशत सही जवाब दिया। आशीष गायकर मुंबई से, कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा उत्तर प्रदेश से और मनीषा साखर दांडे जी ने भी जबलपुर मध्य प्रदेश से दिया आज के सवाल का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और अब जैसा था वादा कि रूप कुमार राठौर साहब की आवाज ही सुनवाऊंगी आपको, सुनिए फिल्म बॉर्डर का ये आइकॉनिक गाना जो आज भी गूज बम्प्स ला देता है। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 यानी 10:30 पर, दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर। उससे पहले आप जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रूपये की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रूकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के

0: कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आवर्जन प्रक्रिया शुरू हुई। ओमान तट पर सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दाम्बुला में त्रिकोणीय 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा है कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों की समर्पित जनसेवा और उनके नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पुर्तगाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुर्तगाल के लोगों और पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ये घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताओं को

0: पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। उन्होंने बताया कि वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा और कहा कि अमरीका ने ईरान के संकल्प की परीक्षा ली है। इस बीच लेबनान में कुछ ही दिन पहले हुआ युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। इसराइल ने कल दक्षिणी लेबनान बंदरगाह शहर टायर पर हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। नवीनतम संघर्ष ने इसराइल और ईरान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: दक्षिणी फिलीपींस में कल बचाव दल ने क्षतिग्रस्त इमारतों की तलाशी ली ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रह गया हो। एक दिन पहले आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 37 लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 500 घायल हुए और 32,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। पिछले कई दशकों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक इस भूकंप के बारे में अधिकारियों ने बताया कि 4 लोग अब भी लापता हैं। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 और कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से ए से होगा और फाइनल मैच खेला जाएगा 21 जून को। बेंगलुरु की सृष्टि किरण ने अंडर-13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है। सृष्टि ने लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतकर और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 ग्वाटेमाला में उप विजेता रहकर यह स्थान हासिल किया है। 13 वर्षीय सृष्टि किरण ने ITF जूनियर रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 357वीं रैंक प्राप्त की, जो विश्व स्तर पर अंडर-13 खिलाड़ियों में सर्वोच्च रैंकिंग है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आव्रजन प्रक्रिया शुरू हुई। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को हरा दिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज।

कभी तुमको भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन है, तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना। और आप आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम भी। और आपको क्या करना है, जल्दी से खोलना है अपना फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब, जो भी आपके पास मौजूद है, fmgoldair@gmail.com पर भेजना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ शेरो शायरी या कोई ऐसी बात जो दिल छू जाए तो बस बात बन जाए, है ना। और व्हाट्सएप मैसेज भी अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए जनाब, 9868687533। जी हाँ, और इस सब के साथ टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी। जी हाँ, क्योंकि आज मैं पूछने वाली हूँ दिल का मेलबॉक्स में आपसे एक सवाल, जिसका सही जवाब भी आप लिखकर भेजेंगे अपने मैसेज में। तो गौर से सुनिए, आपको आज बताने हैं उस गीत के बोल जिसमें हमारे प्यारे किशोरदा, मतलब बहुत ही प्यारे किशोरदा ने मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस में गाया है। साथ ही ये गीत किस फिल्म से है ये भी आप लिखकर भेज दीजिए। फिलहाल रुक कर लेते हैं आपके मैसेजेस का, जो आप बड़ी ही प्यार से भेज रहे हैं। तो जनाब, पहला मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आया है सीधा कहां से, जगह, हाँ, शिवाजी चौक कटनी से आया है ये मैसेज। लिखते हैं कि जिसकी निगाहों में किसी का प्यार जब रच बस जाता है, तो प्यार की खूबसूरती, प्यार की समीपता जिंदगी में अपना बनाने के लिए आतुर हो जाती है। लेकिन किसी के प्यार को पाने के लिए, किसी के प्यार को जीतने के लिए, प्यार करने वाले को डर रहता है कि किसी राह में किसी का प्यार दुख ना पहुंचा जाए, प्यार के सपने बिखर ना जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसी बात को साबित करती एक शायरी मुझे याद आ रही है। बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से मिलती हैं अक्सर नजरें, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता, है ना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और एक और मैसेज जल्दी से शामिल कर लेते हैं, फिर सुनेंगे एक खूबसूरत सा गाना। अनु बड़जात्या जी का मैसेज खोल लिया है मैंने और लिखती हैं, डियर नाज, ये आपके लिए, थैंक यू। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं, आंखों में एक सुकून जैसे चांदनी रात की शांत झील, हंसती है तो माहौल हल्का हो जाता है जैसे बगीचे में बहार आ गई हो, बातों में मिठास, लहजे में नरमी और हरकत में एक अलग सी शालीनता, न जेवरों की चमक चाहिए न मेकअप की सजावट, उसकी सादगी ही सबसे बड़ी रौनक, लगता जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से उसे तराशा हो, और हर अदा फूलों जैसी नजाकत भरी। खूबसूरती तो बहुतों में होती है, पर उसके चेहरे पर जो नूर और आंखों में जो सच्चाई है, वही उसे सबसे अलग बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ अब बातों को देते हैं एक छोटा सा, थोड़ा सा ब्रेक, और सुनते हैं खूबसूरत गाना।

जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है होली चौक उत्तम नगर से। जी हाँ, जयराम खोरवाल साहब, सचिन, अमन, दीपांशु, इन्होंने भेजी है ये फरमाइश रफी साहब की आवाज में, ये खूबसूरत गीत। चलिए सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

साल की शान आकाशवाणी रहा सदा, भारत की पहचान। जी हाँ, हर कोने तक पहुंचाया जिसने ज्ञान और प्यार, उस अमर आवाज को हमारा शत शत नमस्कार। ये मैसेज भेजा है राजेंद्र जटोलिया जी ने उषा चारू के साथ, दिल्ली नागलोई से लिख रहे हैं ये मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कह रही हूं इन्हें इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ अब दूसरे मैसेजेस का भी हम रुख कर लेते हैं जो लगातार आप भेज रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे अपनी तारीफ सुनने का और उसे पढ़ने का शौक है, लेकिन आप इतने प्यार से लिखकर भेजते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता, और इतनी मेहनत आप करते हैं लिखने पर तो उसे पढ़ना तो बनता ही है ना। तो लिखते हैं कि नाज वो नाज है, हमें भी नाज है उसकी आवाज पर, जैसे कोई मीठा सा नगमा बजता हो साज पर, जब वो बोलते हैं तो थम जाती हैं धड़कनें, पल भर को खुदा की रहमत बरसती है उनकी इस आवाज पर, उनकी बातों में घुली है मिश्री और वफा का नूर, उदासी के बादलों को चुकर देती है पल में दूर। वो लफ्ज नहीं दिल को छूने वाला एक एहसास है, उनकी सादगी पर जमाने का हर दिल है मजबूर, सलामत रहे उनकी ये महफिल और ये हसीन अंदाज, जिस पर झुकता है अदब से आज सारा श्रोता समाज। हरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैसेज आया है बबलेश पवार जी की ओर से, डैनी पवार और मनीष पवार इनके साथ शामिल हैं, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है ये मैसेज। इनके साथ ही रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी इनके साथ जुड़े हैं खलीफों की बावड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, इसमें भी लिखी है बड़ी अच्छी बात कि शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो जमीर को जिंदा रखना, आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स जानते हैं, दो शख्स को पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है जी। सतीश अनेजा बिमला अनेजा के साथ लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी जिसे हम पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आशा जी की आवाज में है, तो चलिए सुनते हैं और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आ जाते हैं।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम टू द शो वंस अगेन. दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ और पढ़ रही हूं आपके प्यार भरे मैसेजेस. जी हां, तो मेरे सामने खुला हुआ है इस वक्त राधा नामदेव, अमन आफरीदी, दानिश शेख, नवाज शेख, बेगम इमराना नाज जी का मैसेज, और इनके साथ शामिल हैं मास्टर खिल्लू परवेज जी भी. लिखते हैं कि खूबसूरत नजारा, खूबसूरत चेहरा हमेशा दिल को भाता है, लेकिन सच्चाई बयान तब हो जाती है जब खूबसूरत वादियां भी उन नजरों का बखान करने लगती हैं. मतलब कहना चाहते हैं कि माहौल भी जब आपका साथ देने लगे तब समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला है, है ना. और चलिए इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं और मैसेजेस का भी. और एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि एक सवाल भी पूछा है मैंने आज आपसे. आपको बताना है कि वो कौन सा गाना है, किस फिल्म से जुड़ा है वो गाना, ये भी आप बताएंगे, जिसमें किशोर दा ने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइसेस में गाया है. बहुत ही मशहूर गाना है और बहुत ही चुलबुला गाना है. गीत के बोल आप लगातार लिखकर भेज रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि वो सभी नाम मैं अंत में शामिल कर पाऊं जिन्होंने भेजा है आज के सवाल का सही जवाब. चलिए अगला मैसेज पढ़ लेते हैं इसी बात पर. हरजिंदर छींदा जी ने लिखा है, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता इनके साथ शामिल हैं और ये इनकी पोतियां हैं. गांव नथाना पंजाब से है ये मैसेज. बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं. बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं. संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं. फैल रहा है खूब प्रदूषण.

प्रदूषण काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि सब मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। बहुत ही अच्छी बात और बहुत जरूरी बात लिखकर भेजी है सर आपने। बहुत जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें और अपने एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में सोचें, क्योंकि यही है जिससे हमारा जीवन है। चलिए और मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र कुमार राय जी ने मैसेज भेजा है फरीदाबाद से और अपनी फरमाइश भी लिखकर भेज दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है, ये गलत बात है। और चलिए एक और मैसेज शामिल करें। कार्यक्रम आपकी पसंद, जी हाँ, दिल का मेलबॉक्स है कार्यक्रम, और लिखते हैं कि आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिल के करीब होते हैं वो अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं, ये मेन बात लिखी है। वक्त कहता है कि ठहर जा, दिल कहता है कि चल पड़, और जिंदगी बस इसी खींचतान में बीत जाती है। जी जनाब, यही तो है जिंदगी, जिसे हमें काटना नहीं जीना है। ये मैसेज आया है हमारे पास लालगिरी गोस्वामी जी की ओर से, हेमलता, हिना और हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आया है ये मैसेज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज अब हम शामिल कर रहे हैं राजेंद्र नारंग जी का, और अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग के साथ इन्होंने लिखा है ये मैसेज, अपना फरमाइशी गीत लिखा है और मंडी डबवाली से लिखा है। आपका भी शुक्रिया। और बागपत यूपी से भी एक मैसेज आया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी की ओर से, इन्होंने भी अपनी फरमाइशी लिखकर भेजी है। देखिए मेरी नजरें जो ढूंढती है ना मैसेजेस, वो ढूंढती हैं कुछ शेरो शायरी, क्योंकि मैं तो देखिए मुरीद हूं, कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए, बोलने को मिल जाए तो बस और क्या चाहिए, है ना। तो एक और मैसेज मुझे मिल गया है, लिखते हैं कि चाह कर भी अपने आप को मेल करने से हम रोक नहीं पाते, हमारे कानों में नाज की मीठी आवाज जो पड़ जाती है। खुदा जाने ये कयामत कहां से आई है, इतनी खूबसूरत आवाज खुदा ने बनाई है, माशाल्लाह, क्या बात है सर। चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज आया है, सईद अब्बासी साहब ने लिखा है, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा परिवार इस मैसेज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज को लिखने के लिए। और देखिए एक और मैसेज आ चुका है, सत प्रकाश सनोठिया साहब ने लिखा है रोहिणी से, लिखते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा सौ बरस के पल की खबर नहीं। बहुत ही गहरी बात छुपी है इस शेर में। और अगला मैसेज भवरपुर बसना से है, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन के साथ ही मैसेज आया है भवरपुर बसना से, और लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस गीत की जिसके बोल आप लगातार मुझे लिखकर भेज रहे हैं, और बिल्कुल सही लिखकर भेज रहे हैं जनाब। जी हाँ, फिल्म है हाफ टिकट, और इसी मूवी में जो कि आई थी साल 1962 में, किशोर दा ने एक अलग ही कमाल कर दिखाया था। एक गीत के लिए उन्होंने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइसेस में गाया, और क्या गाया था। सलिल चौधरी का संगीत, किशोरदा और प्राण साहब की जबरदस्त परफॉर्मेंस यानी अदाकारी, वाकई कमाल ही कर गई। और गीत के बोल जो आप लिखकर भेज रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया तेरी तिरछी नजरिया, ओ गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू हियर दिस मस्ती भरा सॉन्ग। बट उससे पहले वो सभी नाम भी तो ले लूं जिन्होंने भेजा आज के सवाल का सही जवाब। तो भाई आफताब अंसारी साहब गंज डुंडवारा से,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने सही जवाब भेजा। उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, अनुबरजातिया मुंबई से, प्रकाश चंद्र जोगिया दिल्ली से, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से आया, बिल्कुल सही जवाब। नवाब अहमद भारती बल्ली मारा।

से, बोधराज खोरवाल उत्तमनगर दिल्ली से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी लखमीर सिंह महलखेड़ी कैथल हरियाणा से, गौरी शंकर वर्मा नागलोई से। और दोस्तों, जैसा कि मैं देख रही हूं लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और वक्त की कमी के चलते मैं सभी नाम तो शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक मैसेज जो अभी अभी आया है उसे जरूर शामिल करूंगी। नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुम्हें देखना है इस नजर से जिस नजर से तुम्हें नजर ना लगे। उग्रसेन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। और एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं, उससे पहले उसके बाद हम सुनेंगे वो गीत जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो यही साथी यही मीत, दर्द काटे गीत संगीत, कभी तो हमारी भी फरमाइश का गीत सुना दिया करें, मेहरबानी होगी और दुआओं में याद रखना हर पल। माफ कीजिए, आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आगे जरूर कोशिश करेंगे। मैसेज आपने बहुत अच्छा लिखा है। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, राहुल खुराना, रचिता और केशु और रिधान भी इस मैसेज में शामिल है। तो चलिए जनाब, वक्त बहुत कम है, किशोरदा को भी सुनना है और वो गाना भी इंजॉय करना है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है? गाना सुनेंगे, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मतलब जाना तो कहीं नहीं है, वहीं टिककर रहना है कुर्सी पर, और फिर सुनेंगे तस्वीर और मैं लेकर चलूंगी आपको एक खूबसूरत जगह, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय। नटखट रंगीले सांवरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सांवरिया हाय हाय।
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन

0: गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today.

Namaskar, Suswagatam, Assalamualaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel 100.1 megahertz par. Aur jahan ke studio ki ghadi mein, is waqt time hua hai 11:11:24. As you know already, कि ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का. तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूं पूरी तरह से तैयार. लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए. आज मैं करवाने वाली हूं आपको राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में मौजूद एकमात्र हिल स्टेशन की सैर. अरावली रेंज में मौजूद रेगिस्तान की गर्मी में सर्दी का एहसास कराने वाली ये जगह, जो कि बेहद खूबसूरत है और करने के लिए जहां बहुत कुछ है, बस वहीं की सैर करेंगे आज आप मेरे यानी नाज के साथ. जगह का नाम क्या है वो मैं नहीं बल्कि आप ही मुझे बताएंगे. कहां और कैसे ये भी आप जानते हैं. fmgoldairdelhi@gmail.com पर जल्दी से कर दीजिए ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9868687 पर, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले.

जी हाँ बिल्कुल, केसरिया बालम, जहाँ की है शान ये गाना, वहीं पहुंच चुके हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, राजस्थान। और जगह का नाम क्या है? ये बिल्कुल सही सही लिखकर भेज दिया है विजय नारंग साहब ने दिल्ली से, सपना बोकोलिया जी ने नागलोई दिल्ली से ही, अनु परजातिया जी ने मुंबई से, उग्रसेन यादव जी ने भी दिल्ली से, एस के खन्ना साहब ने विकासपुरी से, और सुदर्शन मुखी जी ने शांति नगर सोनीपत से। जी हाँ बिल्कुल सही हैं आप। माउंट आबू जा रहे हैं आज आप मेरे साथ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कैसे पहुंचना है माउंट आबू तक, चलिए अब ये बता देती हूँ। तो भाई नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ने वाला है आबू रोड, ठीक है, यहाँ की निचली पहाड़ियों पर ही मौजूद है। कनेक्टिविटी जिसकी दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर अहमदाबाद, हर जगह से बहुत ही बढ़िया है। और रेलवे स्टेशन से मेन हिल स्टेशन तक के लिए आपको यहाँ आराम से बसें या फिर टैक्सीज आराम से मिल जाती हैं। बाय रोड अगर आपको सफर करना पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अहमदाबाद से रेगुलर बसेस आपको मिल जाएंगी माउंट आबू तक के लिए। अपनी गाड़ी से अगर जाने का विचार बने तो पकड़ लीजिए नेशनल हाईवे 14 का साथ और पहुंच जाइए खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए सीधा, एकदम सीधा माउंट आबू। बाय एयर लैंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है उदयपुर एयरपोर्ट जो माउंट आबू से लगभग 185 किलोमीटर दूर है, और दूसरा ऑप्शन आप अहमदाबाद भी चुन सकते हैं, जहां के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आपको करीब 221 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, फिर जब वापस आएंगे तो मुझे आपको है बताना कि किस मौसम में आपको चाहिए माउंट आबू का प्लान बनाना।

राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में माउंट आबू एक ताजी हवा की तरह है। अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जगह, लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा माउंट आबू कई वजहों से आपको अपनी ओर खींचता है। खूबसूरत नदियों, झीलों, झरनों, सदाबहार वनों से लबरेज माउंट आबू ओएसिस इन द डेजर्ट यानी मरुस्थल का नखलिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा, नखलिस्तान इस शब्द के मायने क्या हैं? ये भी मैं आपको बता दूं। नखल यानी खजूर का पेड़ और स्तान माने जगह, यानी एक ऐसी जगह जो भले ही रेगिस्तान में हो लेकिन वहां खजूर के पेड़ और हरियाली भरपूर है। तो ऐसी ही करिश्माई और खूबसूरत जगह लेकर आ गई हूं मैं आपको, जिसका नाम है माउंट आबू। बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा यहां आने के लिए? तो जनाब, इसका जवाब है सर्दियां, यानी नवंबर से फरवरी के बीच, जब मौसम होता है यहां सुहाना और टेम्परेचर रहता है 15 से 25 डिग्री के बीच। रातें हालांकि काफी ठंडी होती हैं यहां, जब टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री तक भी गिर जाता है। दिसंबर के एंड में यहां का विंटर फेस्टिवल आप एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप आते हैं मार्च से जून के बीच, तब बाकी राजस्थान के मुकाबले तो आपको यहां कुछ राहत जरूर महसूस होगी, क्योंकि इस दौरान यहां का तापमान आप महसूस करेंगे 25 से 34 डिग्री के बीच, और साथ ही आप हिस्सा बन सकते हैं समर फेस्टिवल का भी। मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आपको मिलेगी रुक रुक कर बारिश। और हो सकता है कि आप बोटिंग और ट्रैकिंग मिस कर जाएं, क्योंकि बारिश के दिनों में अमूमन ये दोनों एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं। हालांकि अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली और धुंध आपको जरूर मिलेगी, जो कि राजस्थान की रेतीली जमीन पर किसी जादू से कम नहीं।

0: पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां मैं यानी नाज आपको लेकर आ गई हूं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की सैर पर। राजस्थान के सिरोही जिले का हिस्सा है माउंट आबू, जो अतीत में माउंट अबू यानी अरबुदांचल का हिस्सा हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्वत हमेशा से घने जंगलों से घिरा रहा और यहाँ ऋषि वशिष्ठ निवास किया करते थे और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यहीं माउंट आबू की चोटी पर यज्ञ किया था। एक कथा ये भी कहती है कि अर्बुदा नाम के एक सर्प ने भगवान नंदी का जीवन यहाँ पर बचाया था और इसीलिए इस पर्वत का नाम अर्बुदारण्य पड़ गया, जो बाद में अबू कहा जाने लगा। राजस्थान और गुजरात की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ये जगह हमेशा से सबकी पसंद रही, फिर चाहे वो महाराजाओं का शासनकाल रहा हो या फिर अभी का समय। छुट्टियां बिताने के लिए माउंट आबू एक परफेक्ट डेस्टिनेशन था, है और हमेशा रहेगा। यहां पर बने बड़े बड़े घर, ब्रिटिश स्टाइल में बने बंगले, हॉलिडे लॉज आपको एक अलग ही रॉयल एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही जंगलों की तरफ आप जब जाते हैं तो आदिवासी जातियों के डेरे भी आप देख पाएंगे माउंट आबू में। और क्या कुछ है यहाँ देखने और घूमने लायक, जानेंगे इस अगले ट्रैक को सुनने और एंजॉय करने के बाद।

और देखिए मेघा तो सुबह से ही आज छाए हुए हैं यहाँ दिल्ली में। आपके यहाँ क्या हाल है जरा बताइए लिखकर। लेकिन बरस नहीं रहे हैं ये मेघा। कोई बात नहीं, बरस ही जाएंगे। मानसून अब बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, गर्मी से राहत भी मिल ही जाएगी। और फिलहाल लौटते हैं माउंट आबू, जहां अगर आप पहुंच गए हैं तो यहाँ की नक्की लेक तो घूमना बनता ही है। और क्यों आपको यहाँ जरूर आना चाहिए अब ये सुन लीजिए। माउंट आबू के बीचों बीच मौजूद भारत की पहली मानव निर्मित झील है ये, जो लगभग 80 फुट गहरी है और माउंट आबू का दिल इसे कहा जाता है। नक्की, ये शब्द जो है वो हिंदी के नख यानी नाखून से निकला है। दरअसल मान्यता इस झील को लेकर ये है कि प्राचीन काल में देवताओं ने राक्षस बशकली से अपनी रक्षा करने के लिए और प्रवास करने के लिए इस पूरी झील को अपने नाखूनों से खोद कर तैयार किया था। गरासिया जनजाति के लिए ये झील बहुत ही पवित्र है। और जानकारी ये भी मिलती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का एक हिस्सा भी इस झील में विसर्जित किया गया था। उनकी याद में झील के किनारे गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। आप यहाँ आएंगे तो बोटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। पैडल बोट, रो बोट या फिर कश्मीरी स्टाइल शिकारा बोट, वो भी यहाँ मिलेगी आपको। इसके अलावा झील के ठीक ऊपर एक बड़ी सी नेचुरल चट्टान है, जिसका आकार हूबहू एक टोड यानी मेंढक के जैसा दिखता है और इसीलिए तो इसे टोड रॉक कहा जाता है, जहां आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। झील के किनारे की तरफ अगर आप जाएंगे तो मॉल रोड आपको मिलेगी, जहां आप जी भर के कर सकते हैं शॉपिंग। राजस्थानी हस्तशिल्प, बांधनी के कपड़े, लेदर आइटम्स और कोटा डोरिया की साड़ियां आप यहां से खरीद सकते हैं और अपने इस सफर को याद

देखिए, पूरी दुनिया में माउंट आबू अपने दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है और सफेद संगमरमर पर की गई बेजोड़ नक्काशी और यहाँ की वास्तुकला आप देखते ही रह जाएंगे। बाहर से भले ही ये मंदिर आपको साधारण से लगे, लेकिन इनके अंदर कदम रखते ही आपकी नजरें यहाँ की छतों,

खंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी पर टिक जाएगी। और एक खास बात यह है कि ये कोई एक नहीं बल्कि 5 मंदिरों का समूह है जो जैन धर्म के अलग अलग तीर्थंकरों को समर्पित है। सबसे पुराना मंदिर है विमल वसाही मंदिर, जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। दूसरा मंदिर है लुन वसाही मंदिर, जो तीर्थंकर नेमीनाथ जी को समर्पित है। और तीसरा है पितलहर मंदिर, जहां भी आपको भगवान आदिनाथ जी की एक विशाल मूर्ति के दर्शन होंगे। इसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर आप पहुंचेंगे, जो कि 3 मंजिला सबसे ऊंचा मंदिर है और जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। और इसके बाद आखिर में महावीर स्वामी मंदिर में आप पहुंचेंगे और करेंगे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के दर्शन। और इन्हीं मंदिरों के नजदीक आप पाएंगे एक और छोटा सा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे पुराना ये मंदिर माना जाता है, जिसकी सभी दीवारें आपको लाल रंग से रंगी नजर आएंगी। और बस इसीलिए तो लाल मंदिर के नाम से आप इस जगह का जिक्र यहां यानी माउंट आबू में हर किसी के मुंह से सुनेंगे। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना और फिर जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और स्पॉट्स की जो माउंट आबू की शान है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: माउंट आबू की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां अब बात होगी नेचर के साथ हमारे लव की। चलेंगे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए किसी हेवन माने स्वर्ग से कम नहीं। करीब 288 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य की स्थापना साल 1960 में हुई थी, और इससे पहले ये जगह सिरोही के राजा महाराजाओं की शाही शिकारगाह हुआ करती थी। यहाँ दर्शन होंगे आपको तेंदुए यानी लेपर्ड के, इसके अलावा स्लॉथ बेयर, सांभर हिरण, चिंकारा, लंगूर, नेवले, साही और सियार भी बड़ी तादाद में आपको नजर आ जाएंगे। बाकी बर्ड्स वॉचर हैं आप तो करीब 250 से भी ज्यादा बर्ड्स की प्रजातियां आप यहां देख पाएंगे। राजस्थान के रेगिस्तान में होने के बावजूद आपको यहां मिलेंगी पौधों की 820 से भी ज्यादा प्रजातियां। और एक कमाल इस जगह का ये है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगी अलग अलग तरह के ऑर्किड्स और जंगली गुलाबों की 3 दुर्लभ किस्में भी। अभयारण्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ अगर आप जाएंगे तो पाएंगे बांस के जंगल, और ये सब कुछ आप जीप सफारी के जरिए खूब अच्छे से घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नेचर को और करीब से महसूस करने की अगर है ख्वाहिश तो इसके बाद सीधा चले जाइएगा पीस पार्क, जो कि माउंट आबू का बेहद खूबसूरत और शांत बगीचा है।

और अरावली की दो मशहूर चोटियों गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच घाटी में मौजूद है। रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ यहाँ का सिट्रस कॉर्नर भी जरूर आप देखिएगा, जहाँ आपको मिलेंगे नींबू और संतरों के ढेर सारे पेड़। पार्क के एंट्रेंस पर ही आपको मिलेगा रॉक गार्डन, और साथ ही जैसा कि इस जगह का नाम है पीस पार्क, यानी शांति का अनुभव आप यहां कर पाएंगे। इसके लिए कई पत्थर की गुफाएं और घास की झोपड़ियां यहां पर बनाई गई हैं, जहां आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी सारी चिंताओं को भूल सकते हैं।

और अब चलते चलते अगर थक गए हैं आप, तो लीजिए थोड़ी सांस और लुत्फ उठाइए माउंट आबू में मिलने वाले लजीज पकवानों का। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन होने के साथ साथ माउंट आबू गुजरात की सीमा के भी बेहद करीब है, इसीलिए राजस्थानी और गुजराती स्वाद का मेल आप यहाँ पर चखेंगे। लगभग हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में आपको सर्व की जाएगी गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा और गुजराती थाली भी। नक्की झील के आसपास जब आप घूम रहे होंगे तब जरूर टेस्ट कीजिएगा यहाँ की फेमस रबड़ी या बासुंदी, जो पूरे राजस्थान में मशहूर है। मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म या फिर ठंडा, जैसी आपकी इच्छा, आप इंजॉय कर सकते हैं। दाल कचौरी, मिर्ची वड़ा और साथ में गर्मा गर्म चाय, सुबह की शुरुआत तो भाई इसी नाश्ते के साथ होनी चाहिए। और बीच बीच में हल्के फुल्के स्नैक्स के तौर पर जरूर खरीदिएगा चना जोर गरम, जो आपको

यहाँ यानी माउंट आबू में लगभग हर जगह मिलेगा। इंजॉय कीजिए तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज का ये लास्ट सॉन्ग। मुझे यानी नाज को दीजिए इजाजत फिलहाल आपसे विदा लेने की, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ जरूर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर और नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on the 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 64. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. BJP National President Nitin Naveen has said that Prime Minister Narendra Modi has written a new history across the

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मन पसंद शो घर आंगन के साथ और खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे। लेकिन सब

दोस्तों, अभी हमने बात की कि हम बहुत सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना है। आज की दुनिया में जहां अलग अलग विचार, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं, वहां समझ और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। संवाद से ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं, और हाँ, एक बेहतर शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी संकल्प करें कि हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे।

हम बात कर रहे हैं बहुत सारी जानकारियों की, तो जानकारी से जुड़े रहिए और सुनते रहिए घर आंगन का शो, यानी मेरे साथ सिमरन कौर के साथ। और अब बात करते हैं योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, योग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये योग। और ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक समग्र विज्ञान है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें शांति, संतुलन और ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक रूप से योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, रक्त संचार सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। नियमित योगासन से वजन नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर संतुलित रहता है। मानसिक रूप से योग तनाव और चिंता को कम करता है। प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। भावात्मक रूप से हम ज्यादा संतुलित और सकारात्मक रहने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से योग हमें अपने आप से जोड़ता है, यह हमें सिखाता है कि सुख दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। योग के माध्यम से हम अपनी सच्ची प्रकृति को जान पाते हैं। योग कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। बस 20-30 मिनट रोज देने से आपका पूरा दिन जो है वो बदल सकता है। तो आइए आज से ही योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ खुशहाल जीवन जिएं।

और अब बात करते हैं पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर एन राजम की। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया डॉक्टर एन राजम, जो कि देश की मशहूर वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध वायलिन वादिका हैं। उनका जन्म 1938 में हुआ था और मात्र 3-4 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र तक वो प्रोफेशनल परफॉर्मर बन चुकी थी। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग यानी ख्याल गायकी की शैली को बहुत खूबसूरती से अपनाया। इससे पहले वायलिन को मुख्य रूप से साथ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे सोलो वाद्य के रूप में स्थापित किया। उनकी वायलिन गाते हुए लगती है, इसीलिए उन्हें सिंगिंग यानी वायलिन भी कहा जाता है। और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में बहुत लंबे समय तक की सेवा की। पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण, तीनों ही सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। और ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर एन राजम की उम्र अब 88 साल के आसपास है, लेकिन उनका योगदान आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है।

और दोस्तों बात करते हैं, खुशी जीवन के लिए बेहद जरूरी है, यानी हंसने का हुनर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में ऐसी परेशानियों से अधिकांश लोग घिरे हुए रहते हैं। ये स्थिति हैप्पी हार्मोन डोपामाइन की कमी के कारण होती है। और न्यूरो साइंटिस्ट ने डोपामाइन रिसेट करने का एक तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप 24 घंटे में ही असर देख सकते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स पर गहरा असर होता है। धीरे धीरे आपकी मानसिक सेहत में सुधार होने लगता है। और आज के समय में लोगों को उदासी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्मार्टफोन और स्क्रीन टाइम। हालांकि लोगों को लगता है इससे उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन असल में जिंदगी का सुकून छीन रहे हैं। अब लोग खाने से लेकर बिस्तर तक, लेटने के दौरान, यहां तक कि बाथरूम में भी मोबाइल यूज करते हैं। सोशल मीडिया के साथ ही व्हाट्सएप, ईमेल पर इस समय नजरें रहती हैं, कि जो कि सेहत पर बुरा असर डालती हैं। खाना खाते समय किसी भी प्रकार की स्क्रीन ना देखें, और इसमें आपके दिन भर के मील्स भी शामिल हैं। हालांकि इसमें कुछ लोगों को परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी टीवी मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और खास तौर पर डोपामाइन को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। यानी सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन आदतों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ढेर सारी खुशी मिले। जैसे अपने दोस्तों से मिलते रहें और खास तौर पर उनसे बातचीत करें, क्योंकि उनके सुख दुख में शामिल हों। तो जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग बातें साझा करते हैं, तो एक दूसरों की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं। अपने शौक को पूरा ध्यान दें, जैसे किसी को संगीत का शौक है, घूमने का है, पेंटिंग करने का है, उसे भी आप बनाए रखें। और इसके अलावा कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करें, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज में मिलकर रहने की आदत भी आपको खुशी प्रदान करेगी। और इसके अलावा आप घर से बाहर निकलकर ताजी धूप लें, हवा का एहसास करें, इससे डोपामाइन रिसेट होने में मदद मिलती है। तो इन सब बातों पर आप विचार करें। और इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सोने से पहले कभी भी स्क्रीन यूज नहीं करें, क्योंकि इससे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड शामिल हैं। आप सोने से पहले गहरी सांस लें और बिना किसी चिंता या विचार के सोने की कोशिश करें, तब आपको लगेगा कि आप खुशी के एहसास की तरफ बढ़ रहे हैं।

खुशबू की तरह छाइए, लेकिन जरा आंख बंद करके सोचिए, सुबह चिड़ियों की चहचहाट, साफ हवा, ठंडा पानी अच्छा लगता है ना। पर आज हकीकत क्या है, गर्मी बढ़ रही है, नदियां सूख रही हैं। और दोस्तों, पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, खाना और जीवन, लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसे? रोज पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं और कार्बन बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें कुछ आदतों को सुधारना पड़ेगा। घर से निकले तो कपड़े का थैला ले लीजिए, पॉलिथीन को ना कहिए, और एक थैला साल भर 300 पॉलिथीन बचाता है। नल खुला छोड़कर ब्रश नहीं करिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है। बिजली का स्विच ऑफ करना मत भूलिए, एसी 24 की जगह 26 पर चलाइए, बिजली भी बचेगी और बिल भी। गाड़ी रोज निकालने की जगह हफ्ते में एक दिन साइकिल या पैदल चलाइए, और पैदल से चलिए और सेहत भी बनेगी, धुआं भी कम होगा। और हाँ, गर्मी में एक पेड़ जरूर लगाएं, नीम, पीपल, जामुन, जो मिले। पेड़ एसी से बेहतर ठंडक देता है, और वो भी मुफ्त में। तो याद रखिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर टिका है। आइए आज से ही पर्यावरण की रक्षा करें, और एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि धरती की बस यही पुकार, हरा भरा हो संसार, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, और चलिए पर्यावरण के ही अनुकूल।

और अब बात करते हैं कुछ अपनी बहनों के लिए, अपनी सखियों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए जो कि घर आंगन सुन रही हैं। उनकी एक अच्छी न्यूज उनको सुनाना चाहते हैं। बड़ी देर से सोच रही हूँ कब सुनाऊं कब सुनाऊं, तो चलिए सुनाती हूँ आपको अच्छी सी न्यूज एक। और

कि महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के लिए डीटीसी की अपील शुरू कर दी है। दिल्ली में 2.35 लाख महिलाओं ने अब तक कार्ड नहीं बनवाया है और डीटीसी की अपील है कि वो जल्द आवेदन कर ली, क्योंकि दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा लाभ उठाने के लिए 2,35,000 महिलाओं का पिंक कार्ड बनने के लिए अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 5,63,000 तक ही पिंक कार्ड बनवाने वाली महिलाओं की संख्या पहुंच चुकी है। और एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 8 लाख से करीब महिलाएं प्रतिदिन बसों में सफर करती हैं, जो अपने घर से काम पर जाने के लिए बस पकड़ती हैं और घर लौटने के लिए फिर बसों का उपयोग करती हैं। तो ऐसे में 14 लाख से लेकर 16 लाख तक प्रतिदिन पिंक टिकट का उपयोग होता है और महिलाओं को पूरी तरह से पिंक पास बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद ये पिंक टिकट बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले डीटीसी के पास केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन मुफ्त यात्रा के लिए अनिवार्य इस कार्ड को बनवाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया भी है। हालांकि अब अधिकांश पात्र महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं, जिससे केंद्रों पर भीड़ कम होने लगी है, लेकिन डीटीसी प्रशासन ने उन महिलाओं से अनुरोध किया है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। तो पिंक कार्ड के बिना महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा और ये स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना कार्ड के यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट लेना अनिवार्य होगा। इसीलिए असुविधा से बचने के लिए जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में। इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात, तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 1:11 और ठीक 1 सेकंड। जी हां, कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है 100.1 MHz पर। और आज कलाकार बेमिसाल में बात एक ऐसी शख्सियत की जो 1931 यानी 1925 को 31 मई के तब के पंजाब के गांव राहों में पैदा हुए थे और फिल्म जगत में एक गायक बनने की चाह लिए दाखिल हुए। और क्योंकि स्वयं एक शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, ये जानकारी उनको बहुत सहायक सिद्ध हुई और उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसे ऐसे लाजवाब गीत दिए जो आज भी जनमानस की जुबान पर हैं। हमारे आज के कलाकार बेमिसाल हैं निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राज खोसला जी।

0: जी हाँ, सुरीली जादू नगरी से आपके लिए बहुत सारे उम्दा गीत लेकर आए हैं। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और कलाकार बेमिसाल में राज खोसला साहब की बात। अभी आपने राज खोसला जी द्वारा निर्देशित 1956 की CID का नगमा सुना। गाया इस नगमे को आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम जी ने। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और बात राज खोसला साहब की। फिल्म सीआईडी के निर्माता थे गुरुदत्त और फिल्म निर्देशन की बारी किया राज खोसला साहब ने गुरुदत्त जी के सहायक को बनके ही सीखी थी। और राज खोसला जी ने बंबई यानी मुंबई में आकर आकाशवाणी के कलाकार रूप में भी कार्य किया था। फिल्म सीआईडी के बाद राज खोसला साहब ने फिल्म काला पानी का निर्देशन किया, जिसके निर्माता थे खुद अभिनेता देवानंद। काला पानी फिल्म का ये गीत भाई मुझे तो बहुत पसंद है और यकीन है आपको भी होगा। लीजिए सुनिए।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: ज़ालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

राज खोसला जी का सबसे अधिक नाम रोमांचक फिल्मों से जोड़ा जाता है, जिनमें 1964 की वो कौन थी, 1967 की मेरा साया और 1957 की फिल्म अनीता शामिल हैं। और ये तीनों फिल्में आज भी अपने संगीत के लिए जानी जाती हैं। कौन भूल सकता है फिल्म वो कौन थी का ये सदाबहार गीत, और ये गीत आज भी न जाने कितनों को प्रेरित करता है, कितने रिमिक्सेस बनते हैं इसके। लीजिए सुनिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

1:30 और ठीक 10 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है कलाकार बेमिसाल और देविका है आपके साथ। और कलाकार बेमिसाल में बात, जी हाँ, राज खोसला जी की। गीत आपने सुना था लग जा गले के फिर यह हंसी रात हो ना हो, फिल्म थी वो कौन थी, और संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहंदी अली खान साहब। अब सुनिए एक और बेहतरीन फिल्म मेरा साया का एक गीत, लता जी का गाया गीत। जी हाँ, राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखा है और संगीतकार हैं मदन मोहन।

फिल्म वो कौन थे और मेरा साया में संगीतकार थे मदन मोहन, पर राज खोसला साहब की तीसरी रोमांचक फिल्म अनीता में मदन मोहन साहब ने संगीत देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके कथानुसार फिल्म अनीता भी मेरा साया और वो कौन थी के तर्ज पर बनी थी। लिहाजा फिल्म अनीता में राज खोसला साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लिया।

इस गीत के गीतकार भी राजा मेहंदी अली खान साहब थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना साहब की पहली फिल्म 1971 की मेरा गांव मेरा देश भी सिने जगत को राज खोसला साहब की देन थी और इस फिल्म में अभिनेता विनोद खन्ना जी ने अपने अभिनय की वो छाप छोड़ी कि आज भी उनके अभिनय को याद किया जाता है। इस फिल्म में भी लक्ष्मी प्यारे जी का ही संगीत था और सारे गीत इस फिल्म के काफी लोकप्रिय हुए थे। सुनवा रहे हैं आपको ये बेहतरीन गीत। मंगेशकर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर देविका है आपके साथ और बात राज खोसला साहब की। राज खोसला जी को अपने जीवन काल में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की के लिए मिला था और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन 1969 की फिल्म दो रास्ते के लिए मिला था। आपकी सेवाओं को देखते हुए 3 मई 2013 को भारत सरकार ने इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो 20 से 28 नवंबर 2025 को भारत में हुआ था वो इन्हीं राज खोसला जी को याद को समर्पित था। और आज कलाकार बेमिसाल में हमने याद किया राज खोसला साहब को और कलाकार बेमिसाल का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से। ओपी नैयर जी का संगीत, एसएच बिहारी साहब की बोल और आवाज, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। मरकजी काबिना ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत के तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। आज कौमी राजधानी में मरकजी काबिना की मीटिंग के दौरान काबिना के मिम्बरान ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको

0: एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिस से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केन्द्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलैम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने

0: भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं
1: रजनीश।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और हर वक्त की तरह एक नया विषय और हमारे बीच विशेषज्ञ भी हैं और आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही जिससे कि हमारे किसान भाइयों की जो आय की जो वृद्धि है वो दोगुनी हो जाए, चारगुनी हो जाए और साथ ही साथ उनका कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा।
1: बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिये ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विषय है वो है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग की कृषि आय वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण किस तरह से होता है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे।
0: जी हाँ, और आज इस विषय से संबंधित हमारे बीच विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम आसरे जी जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार। और जैसे कि हमारे सभी श्रोता इस बार जानना चाहेंगे कि कृषि आय वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण जो कि हमारा विषय है, किस तरह से हम फूड को प्रोसेस करें, किस तरीके से उसे एक नया रूप दे दें कि हमारी जो आय है दोगुनी हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारे ये सवाल बनता है कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है।
2: सीमा जी आपने बहुत ही यहाँ पे अहम बात की। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए और आपने यहाँ बहुत ही सटीक फरमाया कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। और खासकर आज का जो विषय रखा गया है यहाँ पे कृषि के द्वारा कृषि में या कृषि आधारित जो आय है उसको खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर कृषि हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। यहाँ के जितने बहुत से बहुसंख्यक आबादी यहाँ इस पे अपना जीवन निर्वाह करती है और जो भी हमारे खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग हैं वो कहीं न कहीं कृषि आधारित ही हैं। और अब प्रश्न ये आता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। हम रोजमर्रा की अगर जिंदगी में देखें तो हम अपने एक किचन से खासकर हमारा जो रसोई घर होता है उसमें क्या विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं। आपका आटा होता है, सूजी होती है, दलिया होता है, मैदा होता है और इन सब ऊपर चीजों से उठकर आज हमारा जो विश्व है उस विश्व पटल पे आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आपकी पोषण सुरक्षा की

0: बात चल रही है, और आपका जो भी खाद्य सुरक्षा के मानक को भारत ने पार कर लिया है, और हम पोषण सुरक्षा की आजकल बात करते हैं, और पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है आपके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को सशक्त करते हुए, तो इसमें आप छोटी जो आपकी चीजें हैं, खासकर आपका मैदा सूजी दलिया से ऊपर उठकर आपके विभिन्न प्रकार के जो आपकी विटामिन हैं, आपके खनिज तत्व हैं, आपके द्वितीयक जो आपके अवयव हैं, खासकर आपके रंजक हैं जिसको हम कहते हैं पिगमेंट्स, आप कहें कि आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए, आपकी थाली रंगीन होनी चाहिए, इसका तात्पर्य होना यह है कि आपके उसमें फल भी हो, सब्जी भी हो, जिसमें कि आपको क्लोरोफिल हो, आपके विटामिन हो, आपके मिनरल्स हो, ये सबको दर्शाती है। ये सबको हम अगर समाहित कर दें तो हम कहेंगे ये खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो खाद्य प्रसंस्करण का क्या स्वरूप है, क्या अभी स्थिति है, और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं?
0: देखिए, अगर हम तुलना करें विश्व स्तर पर भारत की, तो हम खाद्य प्रसंस्करण हमारे देश में अभी बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, और इसकी मात्रा जो भी हम खासकर हम फल सब्जियों की बात करें तो इसमें हम जो भी फल सब्जी उत्पादित करते हैं उसका तकरीबन 3.75% हम उसका प्रसंस्करण कर पाते हैं। और हम अगर खाद्यान्नों की बात करें तो खाद्यान्नों में एक काम बड़े स्तर पर, खासकर आपके दलहन है, तिलहन है, आपकी दूसरे और खाद्य अन्य हैं, उनका तकरीबन हम 68% के आसपास प्रसंस्करण करते हैं। तो यहाँ पे जोर देने की बात है, खासकर हमारे फल सब्जियां हैं इनका प्रसंस्करण बढ़ाया जाए। अगर हम तुलना करें दूसरे वैश्विक स्तर पर, तो उन देशों में ये खाद्य प्रसंस्करण फल सब्जियों का वो 50% से कहीं कहीं अधिक है, कहीं कहीं किसी राष्ट्रों में इसकी जो मात्रा है वो 70-80% तक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात पर जोर देना चाहूंगा, बल देकर इस पर हम कहना चाहूंगा कि हमारा राष्ट्र ऐसा एक राष्ट्र है जहाँ पे हर व्यक्ति एक ताजा फल सब्जी चाहता है, और कहीं न कहीं जो ताजे फल सब्जियों की श्रेष्ठता आपके प्रसंस्कृत जो भी उत्पाद है उनकी तुलना में ज्यादा होती है। तो निश्चित तौर पर अगर हमारा जो भी एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपकी सड़क हो गई, रोड हो गई, बिजली हो गई, आपके जो आपके शीतगृह हैं जैसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, इनकी अगर हम क्षमता को बढ़ा लें तो हम निश्चित तौर पर प्रसंस्करण को कम किए बिना भी अपने फल सब्जियों को ताजी स्थिति में जन जन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा और हमारे जो उपभोक्ता हैं उन दोनों को भी फायदा होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने काफी अच्छे से बताया, लेकिन एक बात जो मैं जानना चाह रहा हूं कि खाद्य प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग में, जो वैल्यू एडिशन की, मूल्यवर्धन की बात होती है और शेल्फ लाइफ बढ़ाने की भी बात होती है, तो इससे किस तरह से फसल की बर्बादी भी रुकती है और जो किसान की है आमदनी भी बढ़ती है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश
0: देखिए। इस पर हम एक बहुत ही थोड़े अब गहराई में भी जाना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया है कि मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण, ये दो अलग अलग पहलू हैं। खाद्य प्रसंस्करण एक मूल्य संवर्धन का ही एक अभिन्न अंग है। हमारे यहाँ जो मूल्य संवर्धन है, खासकर हम फल सब्जियों की बात करें, तो इसका मूल्य संवर्धन की मात्रा तकरीबन लगभग 10% के आसपास है। और जैसे कि मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल संवर्धन वो केवल हमारा 3-4% के बीच में, 3.75 के आसपास है। तो आपके जहन में ये बात आती होगी, बाकी ये जो 10% है इसमें ये कहां से आता है मूल संवर्धन? तो मूल संवर्धन के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे आपका खाद्य प्रसंस्करण का एक तरीका है, दूसरा समय में परिवर्तन करके और स्थान में परिवर्तन करके। समय में परिवर्तन करने का हमारा यहाँ पे तात्पर्य है कि मान लीजिए अभी आपके बाजार में टमाटर बहुत ज्यादा आ रहा है, या आम की फसल पकने के बाद बाजार में एक बाढ़ आ जाएगी, लेकिन जो सजग किसान भाई हैं या दूसरे इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उन फल सब्जियों या आम है या टमाटर को शीतगृह में रख देते हैं, शीतगृह में 45 दिन के लिए या 30 दिन के रखने के बाद जो आज की कीमत है वो आपके 1.5 महीने के बाद हो सकता है 10 गुनी तक बढ़ जाए।
1: जी जी।
0: तो ये आपका समय में परिवर्तन आपने किया।

0: कि आपका जो अभी जो मूल्य है बाजार भाव, उसको आपने जो भी फल सब्जी है नासवान उनको आपने कोल्ड स्टोरेज या शीतगृह में रख दिया और एक डेढ़ महीने के समय के बाद आपने बेच दिया, तो उसकी आपकी वैल्यू एडिशन हो गया
1: जी,
0: आपका उत्पाद वही है। तो ये दूसरा तरीका हुआ आपका मूल्य संवर्धन का। तीसरा तरीका जो मूल्य संवर्धन को होता है वो आपका स्थान में परिवर्तन करके, ये कैसे, ये है आपका उदाहरण के तौर पर आपके कश्मीर में सेब ज्यादा पैदा होता है और कश्मीर में जो आपका सेब की कीमत होगी वो काफी कम होगी क्योंकि वो स्थानीय उत्पाद है वहां का। अगर वहां से कोई ढुलाई के माध्यम से दिल्ली आजादपुर मंडी में लाता है तो उसी आपके सेब की कीमत आपकी 5 से 7 गुनी हो जाती है
1: जी।
0: तो स्थान में आपने परिवर्तन किया और मूल्य संवर्धन हो, आपका मूल्य की कीमत मतलब उसका दायरा बढ़ गया, उसकी गुणन बढ़ गया, उसकी क्षमता बढ़ गई। तो ये आपका मूल्य संवर्धन 3 तरीके से होता है, खासकर आपका खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, समय में परिवर्तन करके और स्थान में परिवर्तन करके। तो ये कुछ मूल्य संवर्धन के तरीके होते हैं
2: जी। हाँ डॉक्टर, जैसे आपने अभी बताया कि हमें कोल्ड स्टोरेज के जरिए भी हम कर सकते हैं, अगर हम छोटे किसानों की बात करते हैं तो वो क्या इसे अफोर्ड कर पाएंगे कोल्ड स्टोरेज?
0: निश्चित तौर पर आजकल जो भी हमारा सहकारिता एक बहुत बड़ा यहाँ पे भारतवर्ष की क्षमता रही, सहकार से जो है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स, ये हमारा नारा रहा है भारत देश का। और सहकारिता कोऑपरेटिव्स हमारे यहाँ बहुत ही मजबूत सशक्त आयाम रहे हैं और आपने देखा है कि आपका अमूल दूध है एक कोऑपरेटिव ही, एक सहकार संघ का माध्यम से खड़ा किया हुआ उपक्रम है, उसके माध्यम से कितना उसका बड़ा व्यापार है, जन जन तक अमूल का दूध पहुंच रहा है। इसी तरीके से सहकारिता के माध्यम से आजकल जो कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित किए जा रहे हैं और इसके अलावा भी हमारे जो स्वयं सहायता समूह को भी शीतगृह छोटे स्तर पर इकाई लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हैंड होल्डिंग कर रही हैं, उनकी उंगली पकड़ के उनको आगे तक ले जाने का सफर तय करा रही हैं, इन आपके जो सब्सिडी के माध्यम से, तकनीकी सहायता के माध्यम से। तो ये कुछ आपके इस तरीके के प्रयास हैं जिससे किसानों को समृद्ध किया जा रहा है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा होता है, हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा, जब बम्पर फसल होती है टमाटर की, आलू की, या जैसे फलों में आम हो गया, तो दाम बहुत गिर जाता है और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन घबरा जाते हैं या उनको उस तरह के दाम नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आप हमारे उन किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से जब बम्पर फसल हो तो क्या क्या कर सकते हैं वो?
0: देखिए, जो हमने आपके जो मूल संवर्धन के 3 हथियार बताए हैं, जो 3 अहम बिंदु हैं, हमारे किसान भाई बहन उन 3 बिंदुओं पर अमल करके कहीं न कहीं आप रास्ता तलाशें। जैसे कि मान लीजिए आपका किसी क्षेत्र विशेष में फसल ज्यादा हो गई और आजकल आपका काफी दूर संचार का माध्यम है, ई मार्केटिंग भी होती है, ई नाम जिसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, आप घर बैठे जो मंडियों में ताजा स्थिति क्या होती है फल सब्जियों की या दूसरे उत्पाद की, पूरे राज्य पूरे देश भर में, ना राज्य भर की ही बात नहीं सीमित रहेगी, पूरे मान लीजिए आपका उत्पाद, आपकी उत्तर भारत में कोई अमुक फसल ज्यादा पैदा हो गई, उस समय वो दक्षिण भारत में उसकी कीमत ज्यादा होगी
1: जी।
0: तो उसके माध्यम से एक ई मार्केटिंग के माध्यम से एक व्यापार कर सकते हैं, वहाँ आप वहाँ के ग्राहक तलाश कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इसमें हमारे किसान भाई सहभागिता भी करते हैं, पंचायत स्तर पर भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहाँ पे जो आपके जो कंप्यूटर्स हैं या उससे जुड़े टेक्नीशियन की भी उपलब्धता कहीं कहीं कराई गई है, कुछ जो आपकी अग्रणी ग्राम पंचायतें हैं, तो वहां पे बैठ के देखते हैं कि कहां आज अगर मेरे को आम पहुंचाना है किसी खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, अगर हम हिमाचल प्रदेश बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो इस दूर दराज इस इलाके में आम की आवक नहीं होती, आपका उत्पादन नहीं होता है, तो यहां की मंडियों में हम पहुंचाएं तब भी हम एक कम से कम एक तत्कालिक रूप से आपसे आपकी जो कीमत कम मिल रही उससे निजात पा सकते हैं। दूसरा माध्यम किया आप उसको कोल्ड स्टोरेज भी करें, भंडारण भी करें। तीसरा माध्यम जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए टमाटर है तो उसका आप केचप है या आपका क्रस है, टोमेटो क्रस बना लेते हैं, उसका गूदा संरक्षित कर लेते हैं और उस गूदे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद, चाहे वो आपका प्योरी बनाए, चाहे आपका केचप बनाए या दूसरे विभिन्न उत्पाद बना सकते हैं बाद में।

0: तो ये कुछ तीन तरीके जो हैं आपने बताए, आपके जो आपकी ग्लट आती है, भरमार आती है आपके उत्पाद की, एक सीजनल बेब आती है, एक जो समय होता है कटाई या तुड़ाई का कुछ अमुक फल सब्जियों का, तो उनसे ये कुछ कहीं कहीं निजात पा सकते हैं।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उन्नत किसान। और जैसे कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार वो अभी तक के सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा दी गई ये एक छोटी सी बाइट।
2: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल लगातार जारी है और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। जनता का काम ही उनके लिए राम काज है। इन 12 सालों में अधोसंरचना का जैसा विकास हुआ है उसकी कल्पना करना तक कठिन था। वो प्रधान सेवक हैं, जन सेवक हैं, जनता की सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा है। और आम आदमी के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण हो, युवा हो, किसानों का कल्याण हो, गरीब हो, उन्होंने अनेकों योजनाएं बना के क्रियान्वित की है। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है, समय के बहुत पहले बहुत दूर की सोच लेते हैं और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं देश के हित में। वो मैन ऑफ आइडियाज हैं, लगातार देश और देश की जनता के बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत डिटेल और बहुत एडवांस प्लानिंग करते हैं, जिससे सफलता सुनिश्चित हो। राष्ट्र हित उनके लिए सर्वोपरि है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है वो। जनता के लिए, आम आदमी के लिए वो दिन और रात काम करते हैं और उनके मन में स्नेह, आत्मीयता और संवेदना है। लेकिन देश के दुश्मन और जनता के दुश्मन, चाहे वो आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो या और कोई ऐसे तत्व जो देश और जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज आप देख रहे हैं आतंकवाद समाप्त हो गया है, नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचा है। राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही, लेकिन इसके साथ विश्व बंधु भी है वो। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को हृदय में रखने वाले, इस मंत्र को हृदय में रख के काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों काम किए हैं। 100 से ज्यादा देशों को कोविड का वैक्सीन देने का काम हुआ है। जहां जहां दुनिया में संकट आता है, सबसे पहले भारत मोदी जी के नेतृत्व में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सचमुच में उनका नेतृत्व हमारे लिए वरदान है। सफलता हो अपने देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वो लगातार काम करते रहे।
1: तो अभी आपने सुनी ये माइट हमारे मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह चौहान, जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से थे। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उन्नत किसान। और आज जो विषय है, चर्चा हो रही है कृषि आय वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण। इस विषय से संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं 2342-10-81 और 2342-10-83 पे। आप सीधे हमारे डॉक्टर साहब से फोन करके आज के सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आते हैं वापस विषय पर। और जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण की बात हो रही है, तो अगर हमारे किसान भाई इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं?
0: निश्चित तौर पर हमारे जो ग्रामीण इलाके में भाई बहन कृषि से जुड़े हुए हैं या जो खाद्य प्रसंस्करण में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले कुछ बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा। खासकर ये जो आपका क्षेत्र है खाद्य प्रसंस्करण, बहुत ही इसमें प्रतिस्पर्धा है। आप जान रहे हैं कि आपका उत्पाद जब तक बहुत ही आकर्षक नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता नहीं होगी, तो उसका आप स्थान नहीं बना पाएंगे बाजार में। जैसे कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो निश्चित तौर पर आपके जो उत्पाद की गुणवत्ता हो वो काफी उच्च कोटि की हो, आपका जिसमें भी आप पैक करेंगे उसको पैकेजिंग काफी आकर्षक हो, और इसके अलावा खासकर आप में एक सहकारिता का एक जुनून होना चाहिए, आपका जज्बा होना

0: ना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, अगर आप अकेले इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, क्योंकि आप के पास इतनी कुछ क्षमता नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप प्रतिदिन 100 किलोग्राम या 200 किलोग्राम का कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उत्पाद को इकट्ठा करना, उसका प्रसंस्करण करना, इन सब में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो आप इस दिशा में पहले कदम बढ़ाने से खासकर आप कहीं न कहीं प्रशिक्षण हासिल करें। सबसे एक बुनियादी इसमें जो उसूल होता है, आपकी ज़रूरत होती है, आप कहीं न कहीं प्रशिक्षण हासिल करें। कहते हैं कि गुरु बिन कौन बताए ज्ञान, तो कहीं न कहीं आपको प्रशिक्षण लेना होगा। जिस भी दिशा में आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी मान उदाहरण के तौर पर आप फल सब्जियों पर आधारित कोई संयंत्र, छोटा संयंत्र लगाना चाहते हैं, या किसी भी आप दलहन तिलहन इत्यादि पे आधारित कोई प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और प्रशिक्षण के लिए आपकी केंद्र और राज्य सरकार के कहीं कहीं हर जगह संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, जहाँ पे आपकी इस तरीके की प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और इस प्रशिक्षण की अवधि आपकी एक सप्ताह से लेके तकरीबन एक महीने तक की होती है। और इस पे ये ध्यान रखा जाता है, खासकर समाज से जो संवेदनशील समूह होते हैं, खासकर हमारे जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति, उनसे कुछ भी यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाता है और उनके ठहरने इत्यादि की भी व्यवस्था की जाती है इन प्रशिक्षण केंद्रों पे। तो प्रशिक्षण के साथ साथ आपको दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि हम एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर लें, जिसपे कि आप 10 या 15-20 लोग एक जुड़ लें और उसका कहीं ना कहीं पंजीकरण कराएं। और इसके आधार पे आप कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण की भी व्यवस्था होती है इस तरीके के उद्योग या इकाई लगाने के लिए। इसके बाद जो आपका उत्पाद होगा उसको बाजार में बेचने के लिए काफी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ उपाय किए गए हैं। खासकर हमारा खादी ग्रामोद्योग जो आपका मंत्रालय है या संस्थान है, वहां पे भी इस तरीके के जो उत्पाद आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा जो पंजीकृत हैं उनके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, उनको खरीदते हैं। और इसके अलावा आपका जो हमारे ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी इस तरीके के उत्पाद जो है उनको खरीदने की व्यवस्था की गई। तो इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान भाई हैं वो आगे बढ़ सकते हैं आपकी खाद प्रसंस्करण पर आधारित इकाई लगाने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें हम इस विषय पर और भी करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये उन्हें ले लेते हैं।
2: हेलो,
3: नमस्कार जी।
1: अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं राजेंद्र जाटव मोदी नगर से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, अपना प्रश्न पूछिए।
3: ये किसान की जो आमदनी दुगना करने के लिए क्या करना चाहिए?
0: आपने अभी जो सवाल किया है और इसी पे आधारित ही ये कार्यक्रम है। खासकर आप किसान भाई बहन जो भी अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, दोगुनी तक ही सीमित रख के और भी आगे जा सकते हैं। और इसमें जो खाद्य प्रसंस्करण का विषय है या क्षेत्र है, बहुत ही सशक्त क्षेत्र है। जैसा कि हम अभी प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसान भाई बहन कहीं न कहीं एक छोटी इकाई भी लगा सकते हैं। और ये प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए कुछ क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप प्रशिक्षण का जिक्र किया, इसकी चर्चा की। प्रशिक्षण के अलावा आप एक समूह बनाएं जिसमें कि 10 से 15-20 लोग जुड़ें, और जिनका अपना खुद का उत्पाद है या दूसरे और आस पड़ोस के क्षेत्रों से भी उत्पाद लाके उसकी प्रसंस्करण इकाई लगाएं। और जब प्रसंस्करण इकाई लगाएंगे तो जो आपका उत्पाद होगा कहीं कहीं उसको बाजार में बेचने के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं, उनसे उनको आपको संपर्क करना होगा। और इसके लिए 2-3 संस्थाओं का खास मैंने यहाँ पे नाम लिया, आपका खादी ग्रामोद्योग जो विकास बोर्ड है, उसके माध्यम से भी आप अपना जो उत्पाद होता है उसको आगे बेच सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने फल सब्जियों के बारे में बड़े विस्तार से बताया, लेकिन और क्या व्यवसायिक अवसर हो सकते हैं? जैसे अगर हम अनाज और दलहन की बात करें, डायरी या जैसे शहद है या औषधीय फसल है, तो इस तरह की और नई संभावनाएं जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, युवा किसान हैं, वो किस तरह से इस और आगे बढ़ सकते हैं?
0: निश्चित तौर पर आपका, जैसे आपने कहा कि कुछ

0: मसाले हैं या जो आपके
1: मिलेट्स हो गए,
0: मिलेट्स हो गए, मिलेट्स खास पर हमारा बहुत ही सशक्त कार्यक्रम में भारत सरकार चला रही है। आपके जो मोटे अनाज हैं उनको हम श्री अन्न भी कहते हैं, तो श्री अन्न पर आधारित उद्योग लगाने के लिए खास प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें खासकर आपके जो श्री अन्न है या मोटे अनाज हैं, यहाँ पे कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा, कुटकी इत्यादि का प्रसंस्करण करने के लिए और उनके विभिन्न उत्पाद तैयार करके बाजार में उतारने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, और इस पर भी खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खासकर हमारे विभिन्न जो राज्य और केंद्र के संस्थान हैं वहाँ पे इस पर अमुक बल दिया जा रहा है, और इसकी महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने हैदराबाद में एक श्री अन्न पर आधारित एक संस्थान की स्थापना की है। खासकर इस संस्थान में इस विषय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण वर्ष वर्ष चलते रहते हैं। हमारे किसान भाई बहन वहाँ पे भी अपनी उपलब्धि दर्ज करा सकते हैं, वहाँ से भी प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं।
1: एक सवाल और जो मेरे जहन में, और बहुत सारे किसानों का भी, किसान भाई बहन जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनका भी होगा, जब हम फल सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें ऐसा देखने में आता है कि बर्बादी ज्यादा होती है, लेकिन जब हम डायरी उद्योग या उसकी, जबकि उनकी भी शेल्फ लाइफ कम होती है, वहां शायद ऐसा कम होता है, नुकसान कम होता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों, और फल सब्जियों में भी हम किस तरह से और कम बर्बादी कर सकते हैं और लाभ ज्यादा ले सकते हैं?
0: निश्चित तौर पर बहुत ही अहम सवाल है, और इसकी समझ समाज में हमारे जो कृषक भाई बहन हैं या दूसरे जो इस उद्योग या इकाई से जुड़े लोग हैं, उनको कहीं न कहीं इनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे आपने कहा, मैं इसको पुनः दोहराना चाहूँगा कि आपकी फल सब्जियों की तुलना में आपका दुग्ध है या मत्स्य है या आपका पोल्ट्री के उत्पाद हैं, तो इनकी ये ज़्यादा नाशवान होते हैं, फिर भी इनका कटाई या तुड़ाई उपरांत नुकसान बहुत कम होता है फल सब्जियों की तुलना में। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष में फल सब्जियों का नुकसान तकरीबन तकरीबन 15% के आसपास रह गया है। अगर अगर हम इसके 10 वर्ष पहले की बात करें तो ये नुकसान तकरीबन तकरीबन 20 से 30% था। काफ़ी हमने इस क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों और वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रगति की है और इसको क्षति को कम किया। हाँ, तो मुख्य बात यह है कि खासकर हमारे फल सब्जी हैं उनका आकार, प्रकार, रूपरेखा बहुत भिन्न होती है। उदाहरण तौर पर आपका एक खरबूजे की बात करें, उसका आकार कुछ है, आपका तरबूज का आकार बहुत कुछ है, केला का आकार दूसरा है, और इनको हम अगर इनके लिए हम पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं तो भी आपको बड़ा मुश्किल है। आम को पैक करना दूसरे तरीके का काम है आपका, अमरूद को पैक करना दूसरे, आपके अंगूर को पैकिंग करने के लिए अलग तरीके की, स्ट्रॉबेरी की पैकिंग के लिए अलग तरीके की पैकिंग चाहिए। लेकिन इसी तरीके से अगर आप दूध की बात करें, चाहे आपका गाय का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो या भेड़ का दूध हो, उसकी प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया करीब करीब सामान्य सी है। तो एक ही तौर पे जाके हम उसको प्रसंस्कृत कर सकते हैं, एक ही आपके तापमान पर भंडारित कर सकते हैं। तो ये कुछ फर्क हैं जो कि काफी कठिन बनाता है फल सब्जियों में उनकी तुड़ाई के उपरांत उनका जो स्टोरेज है, उनकी ढुलाई है, उनकी पैकेजिंग है, तुलना में आपके मिल्क है या डेयरी है या आपकी मछली है उनकी तुलना में। इसके अलावा और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि आपका केले का भंडारण के लिए आपको शीतगृह में 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापक्रम चाहिए, आपको सेब को वहीं भंडारित करना तो आपको करीब करीब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापक्रम चाहिए, इसी तरीके से आपको स्ट्रॉबेरी को भंडारित करना तो उसको 4-5 डिग्री सेल्सियस। आपका कहने का तात्पर्य, यहाँ पे फल सब्जियों को भंडारित करने के लिए तापमान की भी अलग आपको जरूरत है। तो ये कुछ विभिन्नता फल सब्जियों का नुकसान काफी करने में कहीं न कहीं अपना अहम जो है रोल प्ले करती है, अदा करती है।
2: जी हाँ, और डॉक्टर साहब, अब एक और बहुत अहम सवाल कि महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है, तो अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो उनकी क्या स्थिति है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वो क्या भूमिका निभा रही है, और अगर हम सरकार द्वारा कोई योजनाएं चल रही है उनके लिए खासतौर पर?
0: जैसे कि आपने यहाँ पे बात कही, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खासकर हमारे खेतीबाड़ी में भी जो हमारा कृषि कार्य में है, महिलाएं अग्रणी हैं, उनकी जो उनका श्रम योगदान काफी पुरुषों से ज्यादा है। अगर हम यहाँ इसको केंद्रित कर दें खाद्य प्रसंस्करण पर, तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरुषों से 2 से 3 गुना

0: चार गुना ज्यादा है और कहीं न कहीं इसकी मुखबिरी या जो पायनियरशिप का रोल है कहीं न कहीं इसमें आगे चलने का अग्रणी भूमिका महिलाओं की है। फिर भी हमारे केंद्र या राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए खासकर इस क्षेत्र में आगे आने के लिए काफी कुछ और प्रावधान किए हैं, जैसे कि उनको ऋण की उपलब्धता में सरलता या प्राथमिकता दी गई है, उनको खासकर जो प्रशिक्षण कराने के लिए भी खासकर महिलाओं को ही कहा गया कि ये आपका जो बैच होगा ये प्रशिक्षण के लिए ये स्लॉट उपलब्ध होगा ये महिलाओं का होगा। तो इस तरीके की कुछ प्राथमिकताएं दी गई हैं और प्रधानमंत्री कृषि कोष में इसमें खासकर आवंटन किया गया है महिला उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण में आगे आए इसके लिए। तो ये कुछ ऐसी अनोखी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है, उनके ऊपर ज्यादा आपका ध्यान केंद्रित किया गया है।
1: जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने, और ये भी हमें बिल्कुल बताया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और महिलाओं को और ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर आना है। बहुत अच्छी जानकारी के साथ आज के कार्यक्रम से समापन करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा kkbongold@gmail.com पर। और किस विषय पर अगर आप खास तौर पे चर्चा चाहते हैं किसी डॉक्टर साहब से, आप किसी विषय पर खास तौर पे जानकारी चाहते हैं, तो भी आप kkbongold@gmail पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, और जिस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं उस विषय को भी आप जरूर हमसे साझा कीजिएगा। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम उन्नत किसान से मैं सीमा सती
2: और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी है।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया।

0: इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की और दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद यह बड़ी झड़प है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत ने वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में है। अफगानिस्तान के कुनार खोस और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer-long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad-Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the Cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. President Draupadi Murmu has congratulated Prime Minister Narendra Modi on serving as the longest continuously elected Prime Minister of the country. In a social media post, the President said that this landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in his leadership by the people of the country. She highlighted that his tenure has been distinguished by far-reaching advancements across governance, economic resilience and social transformation. She said of the many initiatives undertaken under his leadership, PM Janman and Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan hold a special place in her heart. The President said, Mr. Modi's inspiring journey continues to instill hope and renewed confidence in India's strong democratic traditions. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections.
2: Global situation ka fayda uthake
3: taking advantage of the current global situation, some individuals have attempted to create artificial shortages. However, I would like to clarify there is no shortage of CNG or piped natural gas. In fact, efforts are underway to reduce dependence on LPG by promoting the wider use of PNG.
2: Convert karna hai into PNG connection.

3:10 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह वक्त होता है मन भावन का, जब आप भेजते हैं अपने संदेश, अपने ईमेल्स और साथ में भेजते हैं अपनी फरमाइशें। तो जहां पर आपको अपनी फरमाइशें भेजनी है उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। और मनभावन लेकर आपके साथ मैं हूं रजनी। और फिलहाल कौन है हमारे साथ, हमारे श्रोता जिन्होंने सबसे पहले अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, ये है कविता और दिग्दर्शन मेरठ से, और ये सुनना चाहते हैं एक गीत फिल्म जंजीर से। तो आइए कविता और दिग्दर्शन की फरमाइश पर ये गीत से शुरुआत करते हैं मन भावन की। आवाज है मन्ना डे की।

नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती और सूफिया नवाब ने हमें संदेश भेजा है बल्ली मारान से। इनके अलावा हमें सुन रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतका खोरवाल और भानु प्रकाश। साथ ही हमें संदेश भेजा है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। अगला संदेश भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से इनका संदेश मिला और अगला पैगाम सनावत से मिला है शेख मूसा मोहसिन का। और इनके अलावा मनकारा मंदिर बीटीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बहुत

0: सारे लोगों ने एक साथ संदेश भेजा है। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह ने ये पैगाम भेजा। और अगला संदेश गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से मिला है। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे का, और ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी का गीत। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,

चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा ने हमें संदेश भेजा। इनके अलावा स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें पैगाम मिला हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया का। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। स्वराज राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कंचन कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी हमें सुन रहे हैं। इनके बाद जो पैगाम मिला है हमें ये है मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल का। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान। और इनके बाद हमें संदेश मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। और ये सुनना चाहते हैं सुहाग फिल्म का एक गीत, तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

संबलपुर कांकेर से हमें सुन रहे हैं फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इनके बाद हमें संदेश मिला है खंडवा रोड सनावत से शहबाज अरबाज, फरहाज फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख का। और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया हमें सुन रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश भेजने वाले हैं राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, गांव फ्रांसी हिसार से। और गांव नथाना पंजाब से हमें सुन रहे हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। इनके अलावा हमें संदेश मिला है डीके टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का, सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें संदेश भेजा। अगला पैगाम हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का, और ये सुनना चाहते हैं ममता फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की।

0: मैं क्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मनभावन का आधा सफर लगभग हम पूरा कर चुके हैं। इस ब्रेक के बाद जारी है मनभावन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां पर आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें, अपने संदेशों और अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप संदेश कर सकते हैं, ये है 9868868753 और हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। अगला संदेश हम तक पहुंचा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा सुन रहे हैं हमको। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। अगला संदेश हम तक पहुंचा है महिंद्रा वर्क कैलाश का, कहां से भेज रहे हैं ये संदेश ये हमें नहीं समझ में आया है। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन का सुंदर नगर भिलाईगढ़ से। साथ ही हमें संदेश मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का। और साथ ही संदेश हमें भेज रहे हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज, खंडवा, उत्तर मध्य प्रदेश से। और शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से श्रीमती कमला देवी महोबिया ने हमें संदेश भेजा। और शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े, छकुली ताई खोबरखेड़े और खंडवी बुल्ढाणा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े और थिलोरी अमरावती से सुनेना पवन भोंडे ने हमें संदेश भेजा। और राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार ने संदेश भेजा है और ये तीनों सुनना चाहते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत। ये गीत बहुत ही सुंदर है लता मंगेशकर की आवाज में, लेकिन सुनाई कम देता है, कम सुनने में आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए यही गीत आप तक पहुंचाते हैं फिल्म भूत बंगला से।

0: आपके जो संदेशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और हम कोशिश तो यही करते हैं कि आपके सभी संदेश हम पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा फरमाइशें आपकी पूरी कर पाएं। फिलहाल जो संदेश मुझे दिख रहा है ये है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद नूर आयशा अहमद बागवान इकबाल अहमद बागवान अखलाक अहमद बागवान आमना सामना राबिया परी आशु जूही सदफ आरजू बागवान और समस्त बागवान परिवार बागवान मंजिल छोटी बलिया से हमें संदेश भेज रहा है। और मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से और छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान इशरत परवीन मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा ने संदेश भेजा है। ऊपरकोट मोहल्ला चुखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निकत परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अजान अब्बासी अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल दिलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने और मोताला महाराज से विजय सुरलकर रतनमाला और कुमकुन सुरलकर हमें सुन रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं बॉबी फिल्म का गीत। तो आइए आपकी फरमाइश पर ये गीत आप तक पहुंच रहा है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की।
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

भंवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा और जगदीश देवांगन हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ ने, साथ में कमल साहनी भी हैं, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश ने हमें संदेश भेजा है। और इनके अलावा जो संदेश हमारे पास आया है ये है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान गंज डुंडवारा से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल और माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ठेकरे, वर्षा ठेकरे और श्रद्धा ठेकरे ने हमें संदेश भेजा है। इनके अलावा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का पैगाम मिला। और भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रंजीत देवांगन, धर्मेंद्र देवांगन और राजेंद्र देवांगन ने संदेश भेजा। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहेकर ने। और ये सभी सुनना चाहते हैं जंगली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। तो लीजिए, आपकी पसंद पर पहुंच रहा है ये गीत फिल्म जंगली से।

चलते चलते कुछ और संदेश जो हम तक पहुंचे। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके अलावा पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह पलवी

शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह और मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने हमें संदेश भेजा है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा और यशस्वी वर्मा का संदेश हमें मिला। और इनके अलावा धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारी कोशिश तो पूरी रही कि ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश लें, ज्यादा से ज्यादा आपकी फरमाइशें पूरी कर पाएं, लेकिन वक्त का तकाजा है, सारे संदेश सबकी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाई होंगी शायद, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए क्योंकि आपके संदेश तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे संदेश हम शामिल करें। फिलहाल मनभावन से रजनी को इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की राष्ट्र की निरंतर सेवा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी कनेक्शन में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मूज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मूज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की ओर दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमरीका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मूज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए गए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएंगी। ये डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक में उत्पादों और एआई क्षमता को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometre long metro corridor with 5 stations. The Minister said upon operationalisation of Phase 2A, the Ahmedabad-Gandhinagar will have over 77 kilometres of active metro rail network. He said the Cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fiber, MMF apparels, MMF fabrics and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System or GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas CNG in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections. Several leading international human rights organizations have strongly criticized the Pakistani authorities for a violent crackdown on peaceful protest in Pakistan-occupied Kashmir. The group cited an internet shutdown, mass arbitrary arrest and the use of deadly force

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लता मंगेशकर की आवाज में आइए आपको सुनवाते हैं ये लोकप्रिय गीत। फिल्म का नाम है अनुराग।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: बेटी बेटे फिल्म से अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the Warehousing Development and Regulatory Authority, WDRA, statutory authority under the Government of India, has invited applications for one anticipated post of Assistant Enforcement and Legal on deputation or adoption basis. The position carries pay level 7 as per the 7 CPC and is based at the authority's headquarters in New Delhi. The post is suitable for candidates with experience in legal, regulatory, enforcement, compliance and administrative matters. Eligible personnel from central and state governments, public sector undertakings, autonomous bodies and statutory organizations may apply in the prescribed format. The selected candidates will assist in implementing provisions related to warehouse regulation, accreditation and legal enforcement activities under the WDRA framework. For details, refer to the website at www.wdra.gov.in. The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, an autonomous body under the Ministry of Ayush, has launched its postdoctoral fellowship program for the June 2026 batch. The fellowship is designed to promote advanced research in Ayurveda, translation medicine, drug development, clinical research, medicinal plants and allied scientific disciplines. The program is open to Indian nationals holding a PhD or postgraduate degree in Ayurveda as well as PhD holders in allied sciences. A total of 10 fellowships are expected to be awarded annually. Applications must be submitted online through the CCRASPDAF portal and the last date for submission of applications is 30th June 2026. Shortlisted candidates will be invited for research proposal presentations and interviews before an specially constituted expert committee. For details, refer to the website at www.ccras.nic.in. I repeat, the website is www.ccras.nic.in. The CSIR Indian Institute of Integrative Medicine and Premier Research Institute under the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited online applications from eligible Indian citizens for recruitment to posts of security assistant. The institute is engaged in advanced research in natural products, drug discovery, medicinal plants and biotechnology. Interested candidates can apply online after ensuring they meet the prescribed eligibility criteria relating to educational qualifications, age limit, physical standards and other requirements. Detailed information regarding the recruitment process, reservation policies and important dates and application procedure is available on the website www.iiim.res.in. The Transnational Health Science and Technology Institute, an institute of national importance under the Biotechnology Research and Innovation Council, has announced recruitment for one post of senior manager. The position carries pay level 13 as per the 7 CPC and is available through direct recruitment as well as on deputation. Candidates should possess a graduate degree along with postgraduate qualification in human resources, finance, CA, ICWA, or an equivalent discipline coupled with substantial administrative and managerial experience. The last date for submission of online applications is 20th June 2026. For details, do refer to the website at www.thsti.res.in. I repeat the website, it is www.thsti.res.in. The Ministry of Railways has invited applications for the post of a Managing Director of National High Speed Rail Corporation Limited, the special purpose company responsible for implementing the landmark Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail project. This senior leadership position involves overseeing planning, execution, financial management, stakeholder coordination, and operational readiness of India's first high-speed rail corridor. Eligible officers with extensive experience in infrastructure, transportation, project management, or public sector administration may apply through proper channel. The last date for receipt of applications is 11th June 2026. For details, do refer to the website, that is at www.cict.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए एनसीबी काडर उप प्रबंधक कुल पद 14, एनसीबी काडर पदधारी प्रबंधक कुल पद 8, एनसीबी काडर समूह प्रबंधक कुल पद 1, काडर कार्यालय सहायक कुल पद 1, एनसीबी काडर पदधारी हिंदी सहायक 1 पद और एनसीबी काडर पदधारी प्रशासन सहायक 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thsti.res.in। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर एक सलाहकार आईटी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, एसटीए जल प्रबंधन, एसटीए वानिकी, एसटीए जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, एसटीए कृषि एवं बागवानी तथा एसटीए पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

0: आठवीं मंजिल, प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार करिश्मा, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर विद अस टुडे फॉर दिस न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। एंड वी बोथ, माई सेल्फ रेनू कटारिया एंड माई को होस्ट करिश्मा, वेलकम ईच एंड एवरी वन। But before we begin with all our segments and dateline, let's begin with the news headline at this hour, Karishma.
3: जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया।
4: यूनियन कैबिनेट क्लियर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 4,700 करोड़ रुपीज, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ अहमदाबाद मेट्रो एंड गवर्नमेंट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज इन अमरावती।
3: प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी।
4: ईरान कैरीज आउट अटैक्स अगेंस्ट यूएस बेसिस इन जॉर्डन एंड अदर टारगेट्स इन गल्फ, यूएस रिस्पॉन्स विद स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टारगेट्स।
3: अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत।
4: And Met Department predicts significant weather changes in Delhi NCR region in the next 3 days, likely to bring relief from scorching heat. And listeners and Karishma, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about infrastructure at the core of India's development. Sure.

0: And today we are talking about something that affects all of us every single day, and that is the infrastructure. That's right. Whether it is the road you take to work, the train you board, the airport you fly from, or even the internet connection you're using right now, infrastructure plays a huge role in shaping our daily lives.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और अब जरा सोचिए, सड़कें, रेलवे, घर, पानी की सप्लाई के सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क और साफ ऊर्जा वाले प्रोजेक्ट, ये सिर्फ ढांचे नहीं हैं, ये वे आधार हैं जो लोगों को जरूरी सेवाएं और मौके पाने में मदद करते हैं.
0: एंड दे इन्फ्लुएंस सो मच करिश्मा टू इन आवर डेली लाइव्स. इट इज मोर देन वी कैन ऑफन रियलाइज. बेटर रोड्स कैन रिड्यूस ट्रैवल टाइम, रिलायबल इंटरनेट कैन कनेक्ट रिमोट communities, and improved transport systems can boost trade and economic activities.
1: बिल्कुल सही. और असल में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लाखों लोगों के लिए पहुंच और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.
0: And now there is a very interesting question that we have for our listeners here. Have you ever noticed how different infrastructure projects seem to connect with one another today?
1: आपका मतलब है कि कैसे कोई हाईवे रेलवे स्टेशन से जुड़ सकता है जो आगे चलकर एयरपोर्ट या लॉजिस्टिक्स हब से जुड़ता है.
0: वेरी ट्रू, एग्जैक्टली. एंड दैट्स वेयर अ मेजर चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्स इनटू द पिक्चर.
1: और 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़े पैमाने एकीकरण और लंबे समय की क्षमता बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया.
0: अर्लियर डियर लिसनर्स, मेनी प्रोजेक्ट्स वर ऑफन एग्जीक्यूटेड सेपरेटली. वन डिपार्टमेंट वुड बिल्ड अ रोड, अनदर वुड वर्क ऑन रेलवेज, एंड प्लानिंग वाज समटाइम्स कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली.
1: लेकिन समय के साथ नजरिए में बदलाव आया. प्रोजेक्ट को अलग अलग प्रयासों के तौर पर देखने के बजाय ध्यान इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग पर केंद्रित हो गया.
0: एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज एंड सर्विसेज आर प्लान्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, सो दे वर्क टुगेदर मोर एफिशिएंटली. यहाँ पर टीम वर्क कितना काम आता है.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने. और इससे लोगों और सामान की आवाजाही आसान हो सकती है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, और भविष्य की ग्रोथ के लिए मजबूत आधार भी मिल सकता है.
0: एंड करिश्मा, दिस इज लाइक यू नो अ बिट लाइक असेंबलिंग अ पजल. ईच पीस इज सो इम्पोर्टेंट ऑन इट्स ओन, बट द रियल इम्पैक्ट इज सीन व्हेन ऑल द पीसेज फिट टुगेदर लेटर ऑन.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ एसेट्स बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे नेटवर्क बनाना है जो लंबे समय तक समुदायों, व्यवसायों और आर्थिक विकास को सहारा दे सके.
0: एंड एज दीज नेटवर्क्स एक्सपैंड एंड बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हाउ पीपल ट्रैवल, कम्युनिकेट, एक्सेस सर्विसेज एंड पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी.
1: और सागरमाला, भारतमाला, पीएम गतिशक्ति, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना और उड़ान जैसे कई कार्यक्रमों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को काफी बढ़ाया है. इन पहलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को परिवारों की भलाई, आर्थिक अवसरों और क्षेत्रीय विकास से भी जोड़ दिया है.
0: And let's talk about something that millions of Indians use every day, that is the Indian Railways.
1: बिल्कुल सही कहा. और रोजाना सफर करने वाले और छात्रों से लेकर परिवारों और व्यवसायों तक रेलवे ने सचमुच देश की जीवन रेखा बदल दी.
0: एंड वी हैव सीन ओवर द पास्ट डेकेड करिश्मा दैट इंडियन रेलवे स्पेसिफिकली हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंजेस एम्ड एट इम्प्रूविंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड पैसेंजर सर्विसेज.
1: और एक दिलचस्प श्रोताओं ये भी है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित धनराशि में भारी बढ़ोतरी हुई है. में देखा जाए तो 2014-15 में बजटीय सहायता लगभग 32,000 करोड़ रुपए थी.
0: एंड टुडे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इट हैज रिजन टू अप्रोक्सीमेटली 2.78 लाख करोड़ रुपीज.
1: और ये भी सोचिए पहले की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा निवेश हुआ है.
0: सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट्स, द वंदे भारत ट्रेन्स. क्या आपने उससे सफर किया है?
1: बिल्कुल, मैंने सफर किया है और बहुत सारे श्रोताओं ने भी किया होगा.
0: बिल्कुल.
1: और आपने शायद उन्हें देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा. ये भारत की अपनी यानी कि देश में बनी हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं जिन्हें ज्यादातर आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया किया गया है.
0: वेरी ट्रू करिश्मा, विद इम्प्रूव्ड स्पीड, कंफर्टेबल सीटिंग एंड एडवांस्ड ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजी, वंदे भारत ट्रेन्स आर चेंजिंग द वे पीपल ट्रैवल बाय रेल.
1: बिल्कुल, और उनकी मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है. अप्रैल 2026 तक देश भर में 162 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही हैं.
0: एंड इजंट दैट इम्प्रेसिव. नाउ स्पीकिंग ऑफ स्पीड, इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग इवन बिगर, द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर.
1: और अक्सर देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहे जाने वाले इस कॉरिडोर का काम अभी भी चल रहा है और भारत में हाई स्पीड रेल यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम है.
0: इमेजिन लिसनर्स ट्रैवलिंग बिटवीन मेजर सिटीज इन मच लेस टाइम दैन बिफोर. दैट्स द विजन बिहाइंड हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर.
1: लेकिन आधुनिकीकरण सिर्फ ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है. 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है.
0: वेरी ट्रू. एंड नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम रेल्स, लेट्स टॉक अबाउट रोड्स. रोड्स आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल पार्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस देम एवरी डे.
1: और पिछले कुछ वर्षों में भारत का सड़क नेटवर्क काफी बढ़ा है, जिसमें गांवों, कस्बों, शहरों

0: और प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.
1: इनफैक्ट विद अ रोड नेटवर्क ऑफ अबाउट 63.73 लाख किलोमीटर्स, इंडिया टुडे हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड.
0: और इस परिवर्तन में दो महत्वपूर्ण पहलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भारतमाला परियोजना.
1: सो द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क इजंट जस्ट अबाउट बिल्डिंग रोड्स, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज क्लोजर टुगेदर.
0: बिल्कुल. और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल जोजिला टनल के मुख्य हिस्से के आर पार होने के लिए आखिरी धमाका किया. उन्होंने इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण बताया.
1: द ब्रेक थ्रू कनेक्टेड बोथ एंड्स ऑफ द 13.15 किलोमीटर मेन टनल बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन नेशनल हाईवे 1 बिटवीन बालताल इन कश्मीर एंड मीनामार्ग इन द्रास इन कारगिल district of Ladakh. Nitin Gadkari pressed the remote detonator at the east portal near Minamarg, marking a major engineering milestone in one of India's most ambitious infrastructure projects. Dear listeners, we have a report for you.
2: Being constructed at an altitude of 11,578 feet above sea level, the Zojila Tunnel is set to become Asia's longest bidirectional road tunnel upon completion. The project includes the main tunnel, an escape tunnel, three vertical ventilation shafts and nearly 18 kilometers of approach roads. The total project cost is estimated at ₹6,809 crores. Speaking after the ceremony, Union Minister Nitin Gadkari said this tunnel would provide all-weather connectivity between Srinagar and Leh, ending Ladakh's winter isolation, adding that it will boost strategic mobility, tourism and the local economy.
3: कि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा. मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है, और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ. कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है. मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं. ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी.
2: ऑफिशियल सेड मोर देन 75% ऑफ द फिजिकल वर्क हैज बीन कम्प्लीटेड. फॉलोइंग द ब्रेक थ्रू, टनल लाइनिंग, रोड पेवमेंट एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्टॉलेशन विल बी एक्सपेडाइटेड. द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड फॉर कमीशनिंग बाई February 2028. Once operational, the tunnel is expected to reduce travel time across the Zojila Pass from more than 3 hours to around 15 minutes while bypassing snowbound and accident-prone stretches of the highway. The project is also expected to ensure year-round movement of defense personnel, essential supplies and tourists between Kashmir and Ladakh. Local leaders from Kargil and Gandharbal in central Kashmir have hailed the breakthrough as a landmark achievement and described the tunnel as a lifeline for Ladakh that will transform connectivity, economic activity and access to essential services in the region. For Parikrama, Tariq Rathra, Akashwani News, Srinagar.
0: और श्रोताओं, सिविल एविएशन की बात करें तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2026 में 165 हो गई.
1: दी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम लॉन्च्ड इन 2016 इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस टू एयर ट्रैवल फॉर वाइडर सेक्शंस.
0: और इसके साथ ही पिछले 12 वर्षों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के सफर ने अलग अलग सेक्टर में विकास के पैमाने और रफ्तार को बदल दिया. हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट लोगों, सामान और सेवाओं की तेजी से आवाजाही में मदद करते हैं.
1: सो टू कंक्लूड लिसनर्स एंड करिश्मा, द अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ऑल्सो विटनेस डीपर इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स हैव क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, logistics networks and digital ecosystems across the country, and these foundations continue to support India's journey towards Viksit Bharat 2047, jo ki hamara aim hai. Everything is related to Viksit Bharat 2047.

0: Here, dear listeners, the dialogue that we are going to listen to is a memorable scene of Girish Karnad from the movie Sur Sangam, where he takes on a group of young people and gives them a demonstration on music and discusses Indian classical and pop music.
1: Hereafter, please don't be silly, stupid and childish. Sangeet Bhagwan ki deen hai, chahe Bharatiya ho, chahe Pashchimi. Wo bhasha ka bhed nahi janta, apne aur paraye mein fark nahi manta. अमृत की धारा है संगीत जो न कभी टूटती है न सूखती है वो हर प्यासे की प्यास बुझाती है हर हृदय में आनंद जगाती है कौन होते हैं हम जो फतवा दे कि वो संगीत ऊंचा है और ये संगीत ओछा है अपनी पुरानी परंपरा और संगीत में उसकी परछाई को बगैर देखे बगैर समझे उसका अपमान करना मूर्खता है एक तरफ वो विदेशी लोग हैं आपके बीटल्स जैसे जो भारतीय संगीत को महान मानते हैं और इस देश में आकर श्रद्धा के साथ ओंकारनाथ की उपासना करते हैं और एक तरफ आप लोग हैं इसी देश की संतान जो अपने ही देश के संगीत को घटिया मानते हैं उसका अपमान करते हैं आप अपने मुंह से अपनी माता की निंदा करते हैं इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है और इस अपराध के लिए क्षमा भी नहीं है
2: और इसके साथ ही श्रोताओं आज रूप कुमार राठौर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक गजल और सूफी गायक हैं उनकी जन्मतिथि है संगीत उन्हें विरासत में मिला था उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित कलाकार थे रूप कुमार राठौर ने अपने संगीत सफर की शुरुआत तबला वादन से की लेकिन बाद में अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज के बल पर उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई फिल्म बॉर्डर का लोकप्रिय गीत संदेशे आते हैं आज भी उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है

0: And today we are paying tributes to Omkar Nath Dhar, better known by his stage name Jeevan, who was an Indian actor. He played the role of Narad Muni in films of the 1950s, a total of 59 times, and later he played the role of popular villains. And here we are going to listen to one of his best superhit dialogues.
1: जब मेरे पिताजी ने राजपाट छीनकर मुझे दरबदर कर दिया था, उस सब पाप का एहसास किसी को हुआ था? अब मेरा बेटा राजकुमार बनेगा और ये नवाब ज्यादा उसकी गुलामी करेगा।
2: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई बद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के जीएनएसएस रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है।

इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शाम का समा, ढलता हुआ गुलाबी सूरज, ऐसे में कुछ जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग्स अगर सुनने को मिल जाए तो कैसा रहे। गाते गुनगुनाते के जरिए ऐसे ही कुछ गीत हम लाए हैं आपके लिए। एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं रजनी को। गाते गुनगुनाते की शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार फिल्म के गीत के साथ। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ मे

अगला गीत हमने चुना है फिल्म जोश से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। ये गीत फिल्माया गया है ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह पर, लेकिन इससे पहले ऐश्वर्या राय की जो भूमिका थी इस फिल्म में उसके लिए काजोल को चुना गया था और चंद्रचूड़ सिंह का जो रोल था वो सैफ अली खान करने वाले थे, लेकिन दोनों ही डेट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण ये फिल्म नहीं कर पाए और उनकी जगह आ गए ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह।

अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय की डेब्यू हिंदी फिल्म की। 1997 में आई ये फिल्म थी और प्यार हो गया, और ये फिल्म 1994 की इंग्लिश फिल्म ओनली यू का रीमेक थी। तो और प्यार हो गया से एक बहुत ही लोकप्रिय गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज है उदित नारायण की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म मोहरा से। गाते गुनगुनाते आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। 2001 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तुम बिन, और ये आज के जाने माने निर्देशक अनुभव सिन्हा की डायरेक्टर के तौर पे पहली फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म में सारे नए कलाकार थे, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इसके जो गीत थे उन्होंने तो बस धूम ही मचा दी थी। तो आइए इसी फिल्म से आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म तुम बिन से, और ये जो आवाज है ये है सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

तुम बिन के बाद बात करते हैं सिर्फ तुम की। ये जो फिल्म थी इसमें मुख्य भूमिकाओं में संजय कपूर और प्रिया गिल थे, और संजय कपूर ने ये फैसला कर लिया था कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए फिल्मों से संन्यास ले लेंगे। मगर ये फिल्म अनएक्सपेक्टेडली हिट हो गई और इसके जो गीत थे ये भी जबरदस्त हिट हुए। सिर्फ तुमसे अगला गीत जो आप सुनेंगे उसमें आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

सिर्फ तुम की तरह धड़कन भी एक सरप्राइज हिट थी, जिसके पीछे इसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। और आपको एक और बात बताऊं, धड़कन फिल्म में जितने भी गीत थे उनमें हर एक गीत में इसका टाइटल यानी धड़कन शब्द सुनाई देता है। फिलहाल अगला गीत इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग ही है, सुनते हैं। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत
3: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स थ्री लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक केपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान
1: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
2: Mr. Vaishnav said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometre long metro corridor with 5 stations. The Minister said upon operationalisation of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar will have over 77 kilometres of active metro rail network. He said the Cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production-Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The government has approved extension in validity of the Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions 2.0 up to the 31st of August this year or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending to microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The chief of the Balochistan Liberation Front, Dr. Allah Nazar Baloch, has criticized Pakistan's policies in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, saying that growing public resistance in the region reflects demands for fundamental rights, self-determination and political freedom. According to media reports, Dr. Baloch alleged that Pakistan has increasingly relied on repression to suppress dissent but has failed to curb demands for political and economic rights. Meanwhile, reports indicate that more than 30 people have been killed and around 200 injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And with that, we end this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका। देखिए बाहर मौसम तो है बड़ा गर्म पर हम आपको ठंडा ठंडा रखने के लिए काफी बेहतरीन कार्यक्रम और गाने भी लाए हैं साथ में। तो स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि वक्त है कार्यक्रम सदाबहार गीत का, जिसमें पहला गीत हम सुनेंगे आशा ताई की आवाज में और फिल्म है तीसरी कसम।

नहीं नहीं आप हमसे दूर कहीं मत जाइए और हम भी नहीं जाएंगे, बस आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम गीत लेकर आएंगे और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ 100.1 MHz पर।

0: राजेश कुमार सिंहस्योपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पाञ्च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,200,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मन्त्री हरदीप सिंह पुरीवर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य सीएनजी इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च एलपीजी सम्पर्कान् पीएनजी सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पट्टिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लंघनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गोलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।

0: And welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सुबोध जी।
1: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा।
0: Thank you, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Benchmark domestic indices end on a mixed note. Sensex rises over 60 points, Nifty drops 27 points. Major Asian stock markets end with losses and global crude oil prices rise.
1: देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में मिलाजुला रुख, सेंसेक्स 60 अंक ऊपर, निफ्टी 27 अंक गिरकर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भारी गिरावट और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी।

0: Before we move any further, here's a disclaimer for all our listener friends. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें. सबसे पहले शेयर मार्केट पर नजर डालते हैं लालिमा. देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिलाजुला रुख रहा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 64 अंक बढ़कर 73,983 पर बंद हुआ, लेकिन एनएससी का निफ्टी 27 अंक नीचे 23,215 पर आ गया. एनएससी के मिड कैप 100 सूचकांक में 1.5%, स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई. आज कारोबार में ज्यादातर समय सूचकांक सकारात्मक थे और लग रहा था कि प्रमुख एशियाई बाजारों की गिरावट के प्रभाव से बचे रहेंगे, लेकिन आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली से सारी बढ़त हवा हो गई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड ऑन अ मिक्स्ड नोट टुडे. द सेंसेक्स रोज 64 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,983, व्हाइल निफ्टी ड्रॉप्ड 27 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,215. इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मिड कैप 100 इंडेक्स शेड 1.5% एंड स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फेल ओवर 1.3%. Earlier today, markets opened in positive zone, defying weakness across major global peers. Both the indices remained in the positive territory for most of the session. However, profit booking in the final hour of trading erased a significant portion of the gains, leading to a subdued close.
1: और नजर डालते हैं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों पर. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में नुकसान रहा. सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें. इटरनल के शेयर लगभग 2.5% नीचे आ गए. टाटा स्टील के शेयर 2% गिरे और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 1.6% से ज्यादा की गिरावट रही. इसके उलट हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक के शेयर 1.7% उछल गए. कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 1.6% से ज्यादा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 1.4% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.
0: अ लुक एट द सेक्टरल इंडेक्सेस एट द बीएसई. वेल, 22 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन नेगेटिव territory. Among the top laggards, mid-small private banks quality tilt index shed 2.2%, telecommunication fell by 2% and metal dropped 1.9%. Among the top gainers, FMCG rose over 0.8%, top 10 bank index climbed 0.63% and private bank index advanced by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,748 companies declined, 1,472 advanced and 149 remained unchanged. And a look at the rupee. Yes, Subodh.
1: जी, रुपए का हाल यह है कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 95 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ.

0: छह अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.97 पर कारोबार कर रहा था। और हम शेयर बाजार पर चर्चा शुरू करें लालिमा, उससे पहले मुझे लगता है कि आज ज्यादा प्रासंगिक होगा कि हम एशियाई बाजार पर भी नजर डालें, क्योंकि उसका भी काफी असर हमने पहले चर्चा की है कि आज हमारे बाजार पर भी रहा है। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई और इसकी सबसे बड़ी वजह सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कमजोरी बताई जा रही है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.5% से अधिक, जापान का निकेई 1.9%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% से ज्यादा, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.4% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 1.3% नीचे आ गया। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी अभी गिरावट का रुख दिख रहा है। अंतिम समाचार लिखने तक अभी जर्मनी का डैक्स 1.3%, फ्रांस का कैक 0.6% अधिक और लंदन का फुटसी 0.5% नीचे चल रहा था। उदयन, अभी हमने एशिया के देख लिए, यूरोप का अभी जो चल रहा है वो भी देख लिया और हमारे बाजारों का हाल तो हम बता ही चुके हैं। तो इन सब आंकड़ों से और एशियाई बाजार की कमजोरी की वजह भी हमने बता दिया कि सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कमजोरी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है, जब क्योंकि हमारे बाजार का रुख शुरू में तो काफी सकारात्मक था, ये आखिरी घंटे में कुछ मुनाफा वसूली दिखी है।
1: जी, आप सही कह रहे हैं। और मुनाफा वसूली का जो सिलसिला है, कई लोगों का मानना है कि ये सिलसिला चलता रहेगा अनफॉर्चुनेटली। और देखिए, काफी जो डिस्कशन चल रही है मीडिया में, उसमें इसको सीधा भारत के मार्केट के अट्रैक्टिवनेस के साथ जोड़ा जाता है कि हमारे में कोई शायद कमजोरी है, या कई लोग शायद भी नहीं कह रहे, कमजोरी है, उस कमजोरी की वजह से इसको देखा जा रहा है। वो बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा है। कई बार क्या होता है, विकल्प आपके पास अगर बेहतर होंगे तो आप चाहेंगे कि आप उन विकल्पों की तरफ अपने इन्वेस्टेबल मनी, जो निवेश किया हुआ पैसा है, वो ज्यादा करें। तो वो एक एक ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास है, दूसरे मार्केट्स हैं जहां पे काफी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं। यूएस अमरीकी मार्केट ऐसा है, फिर आपके कुछ और मार्केट्स हैं, वियतनाम वगैरह हैं, जहां पे काफी कामयाबी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहां पे वो एक पॉजिटिविटी है जो आ जाती है। दूसरी है बात सुबह जी, ये भी होती है कि जैसे एक आर्ग्यूमेंट था, और जो कि काफी हद तक काफी लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पे वैल्यूएशंस जो है, जो मूल्यांकन किया गया था, वो थोड़े से रिच थे, थोड़े से नहीं, काफी रिच थे। तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट पॉइंट भी चाहिए होता है, तो वो आपको जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसको भी अपने बोर्ड को, अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। तो आप क्या कभी क्या क्या होता है, थोड़ा सा पैसा आप एग्जिट करके, पैसे निकाल के आप प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह में लेके जाते हैं। तो ये एक हेल्दी साइन होता है, मार्केट में एंट्री आसान होना चाहिए, निकलना आसान होना चाहिए, और तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें उतना अपसेट होने वाली बात नहीं है। जहां रही बात टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, मतलब एआई रिलेटेड जो प्ले है और उससे जुड़े हुए सेमीकंडक्टर जो पेरिफेरल्स है, तो अगर एआई अगर आगे बढ़ेगा तो हम मान के चल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उनकी भी मांग होगी, सर्टन टाइप्स ऑफ चिप्स जो हाई कंप्यूटिंग। तो ये टाइम टू टाइम ये थीम्स होती हैं, तो इस वक्त इस थीम का वर्चस्व है। एंड अगर हमारे भारत में हमारा अपना काम चलता रहा, जैसे आपने आज देखा होगा एक अनाउंसमेंट रही है, एक बहुत बड़ी कंपनी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेजर के बीच में एक अनाउंसमेंट रही, उस वजह से स्टॉक, उस कंपनी के स्टॉक में बाउंस आया, तो ये आप पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ भेड़चाल, कुछ सेंटिमेंट, कुछ उस वक्त का फैशनेबल थीम होता है, जो कि डिवाइड ऑफ रियलिटी नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑलरेडी मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है कई कंपनीज में, और उस ज्यादा की उम्मीद है, जैसे जैसे उसकी एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी तो काफी कुछ उथल पुथल एम्प्लॉयमेंट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि काफी डिस्कशन है, हो चुका है इसके ऊपर, पर आपको वो नंबर्स जो

0: जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट्स चलती हैं वो आपको दिखेंगी। अमरीकी मार्केट्स में प्रॉफिट मार्जिन्स जो है कंपनीज के लिस्टेड उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो मार्जिन्स अगर जिस मार्केट में आपके मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है तो उस मार्केट को तो फेवरेबली देखा जाएगा ना, बनस्पत उसके ऐसे मार्केट जहां पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो रहा है और वहां पे मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है या दूसरे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये टाइम टू टाइम सिक्लिकल होती हैं, इसमें इतनी परेशान होने वाली उतनी ज्यादा बात नहीं है। थोड़ा सा फंडामेंटल देखने की भी बात है। अच्छी बात सुबोध जी ये है कि हमारे देश में जो खुदरा रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अभी भी जो म्यूचुअल फंड्स है दूसरी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ा। अभी भी वो भारत के प्रोस्पेक्ट्स से मतलब उनका रेगुलर इन्वेस्टमेंट ये दिखा रहा है कि अभी भी वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो दैट इज शोइंग अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, ये हमेशा नहीं थी। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स जो हमारे पास है। बाकी तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे चैलेंजेस जो हैं वो इस प्रोग्राम में तो रेगुलरली डिस्कस हुए और वो चैलेंजेस बरकरार रहेंगे जब तक आपके ऊर्जा के जो स्रोत हैं स्पेशली हम खाड़ी में जो संघर्ष हो रहा है वो जब तक चलता रहेगा वो एक चैलेंज तो बरकरार रहेगा। उसके बारे में दैट इज नॉट समथिंग जो जिसके बारे में सरकार या हमारे देश के लोग कुछ कर पाएंगे। वो एक सप्लाई इश्यू है और उसके रिस्पांस भी दूसरी तरीके से जुड़े हुए हैं। उसके मॉनिटरी टूल से नहीं होगा। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ा जाएगा, हो सकता है बढ़े आगे चल के, इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस के बाहर नहीं है जैसे कहते हैं, बट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई मर्ज जो है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सप्लाई की है वो भी ईंधन का जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है। सो इफ आप इस बैकग्राउंड में अगर इसको देखें तो मुझे लगता है कि आपको जो पजल पीसेस हैं वो आपको थोड़े से बेहतर समझ में आएंगे।
1: टू क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। सेंसेक्स राइजिंग 64 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,983, निफ्टी ड्रॉपिंग 27 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,215। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस बिट ऑफ अ डायकॉटमी टू आवर लिसनर्स?
0: दैट कुड बी जस्ट वन इज अ 30 स्क्रिप और स्टॉक इंडेक्स, अदर इज अ 50। सो इट कुड बी द composition, you know, particular area might not have been doing well. Sometimes in certain counters some profit booking has happened. So the range within which our markets move, 64 points or whatever has happened today, is not something that would one should take too much into it. However, it is important that people who have been investing, say, passively in the index, say through an index fund or an ETF, they might basically be feeling the pinch because they have seen 75,500.
1: Right.
0: And from there to see this sub, 74 kind of range, there are lots of investors who have come in. They have only seen the markets go up. So that's a challenge for them.
1: Yeah.
0: And given that, and there are a lot of these people who are young, I would say we are holding up pretty well. I'm quite impressed, actually, to be very honest.
1: Yes, after a point, it all becomes so relative, what you've seen and all that. All right, a look at the U.S. markets now. Most U.S. equities ended lower yesterday as technology stocks lost momentum after a one-day rally. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index shed nearly 1%. The S&P 500 lost almost 0.3%. However, the Dow Jones Industrial Average gained around 0.2%. Meanwhile, investor sentiment remained subdued as markets awaited key inflation data and the debut of the world's largest IPO due this week. How do you see this? Because there has been news that inflation in the U.S. has been making news all these months, and also their employment, it's doing better. Supposedly,
0: yeah.
1: A quick comment.
0: So today, I think today or tomorrow, data is due, and I think the markets will be keeping a hawk eye on that. Because once they see that data, I think it's the inflation data that's going to come in, and that is going to inform them what the new Federal Reserve Chair, Kevin Warsh, is going to be doing. So that's what the discussion now is, that maybe there won't be a rate hike in the immediate future, but maybe towards the end of the year it may be almost inevitable.

0: that something might happen. So that today the markets will be looking for that cue. That's a very important cue. Mm-hmm. That obviously is going to have a spillover effect on our markets.
1: Right.
2: आपने SIP का जिक्र किया था उदयन और आंकड़े आ गए हैं MFI के. अब उन पर नजर डाल लेते हैं. मई महीने में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश प्रवाह 40% घटकर 22,908 करोड़ रुपए रह गया है. अप्रैल में यह आंकड़ा 38,440 करोड़ रुपए का था. यह जानकारी एमफी द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है. मई में एसआईपी के जरिए निवेश 30,954 करोड़ रुपए रहा, जो अप्रैल की तुलना में 0.5% से ज्यादा की गिरावट है. और बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन 0.5% तो है. गोल्ड ईटीएफ में निवेश का रुझान उलट गया है. मई में गोल्ड ईटीएफ से 725 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, जबकि उससे पहले के महीनों में इसमें निवेश देखा गया था. इक्विटी फंड श्रेणियों में फ्लेक्सी कैप फंड सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया. उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप का नंबर रहा. दूसरी ओर डेट फंड श्रेणी में निवेशकों के रुझान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मई में इस श्रेणी से लगभग 97,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि अप्रैल में इसमें 2,47,000 करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया था. ये ट्रेंड क्या बता रहा है उदय?
0: देखिए, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, डेट फंड्स को पहले लेते हैं. तो डेट फंड्स जो है रिटेल खुदरा या छोटे निवेशक हैं, वो डेट फंड्स में उतना पैसा लगाते नहीं है. आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये कॉरपोरेट्स और या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने पैसे निकाले और उनका उनके ट्रेजरी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है, सरप्लस जो पैसे होते हैं उसके डायनामिक्स अलग होते हैं. तो आई एम नॉट, मैं बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नहीं हूं. ये मोर ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है. मेरे को बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ है कि फ्लेक्सी फंड्स जो आपके इक्विटी फंड्स में उसमें मैक्सिमम पैसे आए हैं, क्योंकि फ्लेक्सी फंड्स के कुछ फंड्स जो हैं उनके प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. और काफी कुछ इक्विटी फंड्स में सुबोध जी ऐसा रहता है कि जो रिटर्न्स होता है वो अट्रैक्ट करते हैं. तो बाकी जो आपके जो फंड्स हैं जहां पे रिटर्न्स में इम्पैक्ट रहा है, जैसे आपके प्योर लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स या दूसरे फंड्स जो हैं, वहां पे जहां पे परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट रहा है, तो क्योंकि आप अगर वन ईयर परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स ने देखा होगा, शायद वो उसमें वो सिंगल डिजिट पे आ गए. तो हो सकता है कि इसी वजह, ये ऑलमोस्ट सर्टेन हूं कि उस वजह से ये असर रहा होगा. दूसरी बात, यहां पे जो गोल्ड वाला जो आप एग्जिट देख रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग की तरह है, जो कि बिल्कुल करना नहीं चाहिए. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने भी यही किया होगा. और रही बात ये जो फॉल, ये जो फ्रेश जो पैसा आ रहा है, जो हर महीने में फ्रेश नया पैसा आता है, उसके बारे में बातचीत हो रही है. तो ये उस संदर्भ में देखना चाहिए. तो सुबोध जी, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये पाया जा रहा है कि जो छोटे शहरों में जो निवेशक थे, कुछ उनमें से कई लोगों ने, अब ज्यादातर लोग अभी भी निवेशित हैं, एसआईपी कर रहे हैं, पर काफी लोगों ने उसको बंद किया है. और वो डू इट योर सेल्फ DIY इन्वेस्टर्स है, जो कि डायरेक्ट उसमें कर रहे हैं. तो उसमें क्या होता है सुबोध जी, कई बार क्या होता है जब मार्केट्स में उथल पुथल होती है तो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, लोगों को बताने की जरूरत है. ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले ऐसे कई बार हो चुके हैं, और आपको चिंता करने की, तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. और 2020 के बाद से जो दौर आया था जब मार्केट्स वन वे अप जा रही थी ब्रॉडली, तो तब लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत आसान है. तो ये इतना आसान भी नहीं होता, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उसका भी एक वैल्यू होता है. तो ये काफी DIY इन्वेस्टर्स जो हैं उनको असर पड़ा है, उनके साइकी में असर पड़ा है, मनोवैज्ञानिक एक असर पड़ा है. और लोगों का कहना है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कुछ आपको ये पिक्चर देता है। तो डेट फंड में चिंता की बात नहीं है, फ्लेक्सी फंड्स इसलिए क्योंकि कुछ फंड्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है इस माहौल में भी। और जो थर्ड जो स्मॉलर टाउन्स में जो निवेश कर रहे थे एसआईपी में, वहां पे थोड़ा सा डेंट लगा है।
1: ऑलराइट, डीआईवाई इन्वेस्टर्स, दैट्स अ

0: Absolutely. And of course, time to get even more ambitious. Mm-hmm. And because the road to 2047, when we want to become a developed country, would need a lot of foreign direct investment. So all the encumbrances, obstacles, they need to be dealt with on a mission mode basis.
1: Yes, and we need to push up probably domestic investment.
0: Absolutely.
1: All right. Facebook's parent company Meta today announced that it will establish its first AI-enabled data center in India. As part of the agreement, Meta and Reliance Industries will build a data center with 168 megawatt capacity at Jamnagar in Gujarat, which Meta will lease with options to scale. In a statement, the global company stated that India's massive user base and fast-growing digital economy make it an ideal place to invest. How much are you in agreement with this?
0: Absolutely. And these are the kind of announcement, I actually mentioned this earlier in our discussion. So these are the kind of announcements that the market, interestingly, is going to react positively just because it's in vogue right now. So it's, if you give it the AI play kind of a clothing, markets is going to respond positively. So yes, this is exactly what I was referring to. Mm-hmm. So there's no doubt that we'll be one of the leading, not only consumers of AI products, but things like data centers would be a very key part. And of course, we'll be doing our own stuff. We'll be developing our own models, which we are doing right now.
2: क्या हाल रहा है कच्चे तेल का
1: ऑल राइट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 1.8% अप एट 93 यूएस डॉलर्स एंड 13 सेंट्स पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 2% अप एट 89 यूएस डॉलर्स एंड 98 सेंट्स पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग 2.2% लोअर एट 1,49,270 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,34,700 rupees per kilogram a short while ago.
2: और MCX में अगस्त अनुबंध वाला सोना लगभग 2.2% नीचे 1,49,034 रुपए प्रति 10 ग्राम पे था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1.9% गिरकर 2,34,000 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी तो हमने कच्चे तेल और सोने चांदी का हाल देख लिया है उदयन आप क्या कहना चाहेंगे
0: देखिए सुबोध जी क्योंकि सोना जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड आपकी खरीदारी जो है विश्व में डॉलर से जुड़ी होती है तो रुपए पे अगर असर पड़ता है तो बैठे बैठे ही वहां पे वैल्यू में चेंज आ जाता है दूसरा है कि सेंट्रल बैंक्स उसके हमने जैसे पाया था तकरीबन एक साल तक सेंट्रल बैंक्स काफी एक्टिव रहे वो उन्होंने खरीदारी की और वो बहुत बड़े वॉल्यूम में खरीदारी कर रहे थे तो वो एक असर है फिर आपके जो यूक्रेन में जो संघर्ष है खाड़ी में जो संघर्ष है उस पर एक असर पड़ता है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहां जाते हैं तो ये सब चीजें जो हैं कमोडिटी प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं
2: जी उदयन मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: एंड फ्रेंड्स बिफोर वी क्लोज हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस Benchmark domestic indices end on a mixed note. Sensex rises over 60 points. Nifty drops 27 points. Major Asian stock markets end with losses and global crude oil prices rise. And well, that's all we have for you friends in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mishra, signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में 4399

0: दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। आईसीसी ने डॉ सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने युवा संगम के छठे चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलाव तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। और राजधानी में जारी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कल वर्षा की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बिना किसी अवकाश के निरंतर राष्ट्र सेवा का अनूठा उदाहरण बताया।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज केवल जन प्रतिनिधियों ने ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिक प्रधानमंत्री के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वह महसूस करती हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जो सराहनीय है।
4: महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया, आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि देशवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय तक देश की सेवा की है और उनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
5: विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है। हमारे देश 11-12 वर्षों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वह ऐसे ही देश की सेवा करते रहे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, अपने आप को प्रधान सेवक कहता, तो उनकी सोच से ये आता है कि हमको देश के किसान, देश के पिछड़े हुए, देश के आदिवासी कोने कोने तक जाना है और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है।
2: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो देश के लिए गौरव की बात है।
6: 140 करोड़ की जनता के लिए जो उन्होंने अनवरत जो सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जो लाभान्वित ना हुआ हो, पूरी दिल्ली की जनता भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर्मशील, स्वस्थ जीवन, दीर्घायु के साथ और जनता की सेवा में लगे।
2: इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने रोहिणी स्थित श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और महाआरती का आयोजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और देशवासियों के गहरे और निरंतर विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए

0: बैठक के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र सेवा के सतत 4,399 दिन तथा सेवा सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सभी के लिए राष्ट्र सेवा, तप, त्याग और कर्म निष्ठा की प्रेरणा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में विकसित भारत का संकल्प जन आंदोलन बन चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर देश की उन्नति, समृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज लोक निवास में युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आए 65 युवा प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली द्वारा किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर श्री संधू ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित युवा संगम देश की विविधता में एकता को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण को रूप देता है और युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क तथा प्रौद्योगिकी के 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से देश को निकटता से समझने का अवसर प्रदान करता है। युवाओं के साथ संवाद के दौरान उपराज्यपाल ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलावों तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे देश के भविष्य के सबसे अहम हितधारक हैं। श्री संधू ने अपने सार्वजनिक जीवन और कूटनीतिक अनुभवों को भी युवाओं के साथ साझा किया तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज अमृतसर स्थित भाई वीर सिंह साहित्य सदन का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक पंजाबी साहित्य के जनक भाई वीर सिंह के आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भाई वीर सिंह जी की आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत आज भी समाज को प्रेरित कर रही है तथा हमारी सांस्कृतिक और नैतिक चेतना को सशक्त बना रही है। रक्षा खरीद और उत्कृष्टता के लिए नवाचार और लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई सहित स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं पर एक कार्यशाला कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य रक्षा ढांचे में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना है। इस 2 दिन की कार्यशाला का उद्देश्य संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से उद्योग प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने छावला थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज करीब 22 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इस्तेमाल की जा रही एक 4-पहिया वाहन भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति के अंतर्गत की गई है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी मामले में सहकारी बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक फर्जी अकाउंट के संचालन में शामिल होने का आरोप है, जिसका संबंध देशभर में दर्ज 159 साइबर ठगी की शिकायतों से पाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक खाते के जरिए करीब 67 करोड़ रूपये के लेन देन का पता चला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपने कार्यकाल में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के समर्पित

0: कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक अवसर और केंद्र सरकार के जनसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। श्री खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास, स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसेवा की भावना ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा विकसित भारत का संकल्प जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
1: देश की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और जिस विश्वास के भरोसे प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास यात्रा प्रारंभ की है, भारत विश्वगुरु बनेगा, ये सब देशवासियों के स्नेह, प्रेम और विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ उसके लिए योजनाएं लेकर के आई है। जहाँ कुछ नई योजनाएं तय होंगी वहाँ हम सब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक लेकर के जाएंगे ताकि आम जनता को भी उसका लाभ मिल सके।
0: राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने युवा संगम के छठे चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलाव तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की समय नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बैठक को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सिद्ध भारत पल रहा है, आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी है, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं, हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानव के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी।
0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली जीएनएसएस जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पांचवें चरण की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत जारी की गई गारंटी की कुल संख्या आधिकारिक तौर पर 1,00,000 से अधिक हो गई है, जिसकी कुल गारंटी राशि 48,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये उपलब्धि ऋणदाताओं को दी जा रही व्यापक ऋण सुरक्षा को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया, वहीं तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिंचियान को मात दी। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना ईशा रानी बरुआ से और तन्वी का मुकाबला मालविका बंसोड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani। द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that people of India have understood the importance of a stable governance. He thanked people of India for placing faith on him and giving him an opportunity to serve the nation. We now go over live to NDA Conclave where Prime Minister Modi is addressing the gathering.
1: CAA ka kanun, Bharatiya Nyaya Sanhita, Sainikon ko one rank one pension, NDA Sarkar राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
2: Earlier, the National Democratic Alliance, that is NDA, adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. The Union Cabinet also passed resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, The resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said, The Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said, It comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. He said, The Cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. Wishes are pouring in.

अगला गीत जो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से और उसे गाया है मुकेश ने और ये गीत आधारित है राग यमन पर। राग यमन का गायन रोशनी जलाते समय यानी कि ठीक इस समय होता है और इसका मूल नाम राग कल्याण है और मुगलों के शासनकाल से ही यमन नाम प्रचलन में आया। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज में।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और कार्यक्रम मधुरिमा में मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका। अगला गीत है फिल्म आम्रपाली से और इसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत आधारित है राग भूपाली पर। भूप का अर्थ है राजा। राग भूप या भूपली कल्याण राग परिवार का एक भव्य राग है। ये एक बहुत प्राचीन राग है। अपनी सरलता के कारण ये राग विद्यार्थियों को सिखाए जाने वाले शुरुआती रागों में से एक है, लेकिन अभ्यास बढ़ने के साथ साथ ये एक विशाल राग बनने की क्षमता रखता है। कर्नाटक संगीत प्रणाली में इसे राग मोहन या मोहनम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता जी की आवाज में।

दोस्तों, अगला जो गीत है वो है बैजू बावरा फिल्म से और इसे गाया है रफी साहब और लता दी ने। और जो भी हिंदुस्तानी संगीत को जानता है वो ये जानता है कि राग भैरवी जो है वो काफी प्रचलित और काफी प्रभावी राग है। कोमल स्वर और उनका मधुर गायन जिसमें खटके झटके और मुर्कियां जैसे मधुर स्पर्श शामिल हैं। और अगला गीत भी राग भैरवी पर ही आधारित है। और राग भैरवी सुबह का राग है, लेकिन इसका प्रयोग संगीत कार्यक्रमों के समापन के रूप में किया जाता है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए।

श्रोताओं, जैसे मैंने बताया कि ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, तो इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए आपकी रेडियो सखी रेणुका को। पर अगली बार तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। देहरादून में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में सरबजीत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। और ग्लोबल शतरंज महोत्सव आज से मुंबई में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज का दिन खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया, जबकि तन्वी शर्मा भी उलटफेर करने में सफल रही। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु, तन्वी, मालविका बंसोड़, ईशा रानी बरुआ और तान्या हेमंत सभी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में एक तरफा मुकाबले में पेरू की इनेस लूसिया कास्टिलो सालाजार को सीधे गेम में सिर्फ 32 मिनट में 21-13, 21-11 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ से होगा, जिन्होंने 1 घंटा 3 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में चीन की हान कियान को 22-20, 10-21, 21-14 से शिकस्त दी। दिन का सबसे बड़ा उलटफेर 17 साल की तन्वी ने किया, जिन्होंने 5वीं वरीय और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को 45 मिनट में 21-12, 22-20 से शिकस्त दी। तन्वी अगले दौर में मालविका से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड की तोरुंग सिहिंग को 15-21, 21-7, 21-13 से हराया। तान्या ने अमेरिका की ऐशिका जायसवाल को 39 मिनट में 21-17, 21-18 से हराया। तान्या का मुकाबला पूर्णपावी चोचुवोंग से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लिंजडेन और विक्टोरिया जोनाडी को 27 मिनट में 21-13, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। किरण जॉर्ज, थरुण मन्नेपल्ली और क्वालिफायर सनित दयानंद पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात निशानेबाजी की। देहरादून में राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल इवेंट आयोजित किए गए। सरबजोत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल शूटिंग रेंज में कल राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल हुए, जिनमें पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह, आर्मी शूटर लक्षिता, पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अखिल शिवरान और महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पाडेकर अपने अपने इवेंट्स में विजेता बने। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सरबजोत ने 245.9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। आर्मी के शूटर अजेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में 245.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 221.5 के स्कोर के साथ टॉप 3 में शामिल है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में आर्मी शूटर लक्षिता ने हरियाणा की सुरभि राव को सिर्फ 0.2 पॉइंट के अंतर से हराया। लक्षिता ने 240 का स्कोर किया, जबकि सुरभि ने 239.8 का स्कोर हासिल किया। उत्तर प्रदेश की मानसी आनंद ने 220.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। ISSF म्यूनिक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि और पलक ने क्वालिफाई करने के बावजूद फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के अखिल शराण ने नेवी के नीरज कुमार को सिर्फ 0.2 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया। अखिल का स्कोर 358.3 रहा, जबकि नीरज 358.1 पर रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 345.4 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पडेकर ने 358.2 के स्कोर के साथ पहला, वहीं कर्नाटक की तिलोत्मा सेन ने 357.2 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की आशी चौकसे ने 345.5 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात फुटबॉल की। चार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन फीफा विश्व कप कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक है।

0: पहली बार इस विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। सुनते हैं फीफा विश्व कप पर एक खास रिपोर्ट।
1: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट न केवल फुटबॉल का उत्सव होगा बल्कि खेल के इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक साबित होगा। दुनिया

0: भर के करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें एक बार फिर उन सितारों पर होंगी जो अपने देशों को विश्व विजेता बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगा, जबकि फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार हैं। सबकी निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी पर होंगी, जिनके लिए ये विश्व कप अंतिम साबित हो सकता है। 2022 में कतर में विश्व कप जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाले मेसी एक बार फिर इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम, ब्राजील के विनीसियस जूनियर, स्पेन के युवा सनसनी लामिन यमाल और पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस भी इस विश्व कप के प्रमुख आकर्षण होंगे। अगर टीमों की बात करें तो अर्जेंटीना अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। फ्रांस के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन है, जबकि ब्राजील हमेशा की तरह अपनी आक्रामक शैली और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण खिताब की दौड़ में है। हालांकि विश्व कप केवल दिग्गज टीमों का मंच नहीं होता, हर बार कोई ना कोई बड़ी टीम, कोई ना कोई नई टीम उलटफेर कर इतिहास रचती है। इस बार मोरक्को, जापान, सेनेगल और उरुग्वे जैसी टीमें डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। मोरक्को ने 2022 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था और इस बार भी उसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले ही रोमांच से भरे होने वाले हैं। मेजबान देशों पर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन का दबाव होगा, जबकि बड़ी टीमें शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहेंगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता इसका नया प्रारूप है। 48 टीमों की भागीदारी से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही देशों और नए सितारों के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान श्याम थापा ने कहा कि फुटबॉल विश्व कप की लोकप्रियता पूरे विश्व में है।
1: फुटबॉल इज मोस्ट लविंग गेम सारा विश्व में। आप सारा दुनिया अभी देखने में मस्त हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है। और ये आपसे नहीं, बहुत दो वर्षों से ये जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग के टाइम आगे से फुटबॉल में लिया जाता था, लेकिन ऐसे नाम अभी हम लोग जो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे ऐसे कलाकार फुटबॉल में, उनको कौन भूल सकता है। मेरे को लगता है फुटबॉल जैसा क्रेज सारा विश्व में और कोई दूसरा गेम में नहीं है।
0: अगले कई सप्ताह पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंगी होगी। कहीं मेसी की आखिरी विश्व कप की कहानी लिखी जाएगी, कहीं एम्बाप्पे जैसे युवा सितारे अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं अनजान खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि सपनों, जुनून, गौरव और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
2: शतरंज की मुंबई में 360 ग्लोबल शतरंज महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 18 जून तक खेली जाएगी, जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता एस किशोर की एक रिपोर्ट।
3: 58 लीडिंग चेस प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग 16 कंट्रीज, अमंग दम 14 ग्रैंड मास्टर्स, 34 इंटरनेशनल मास्टर्स, 6 फिडे मास्टर्स, 2 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स एंड 2 कैंडिडेट मास्टर्स कंप्राइज द स्टार स्टडेड फील्ड दैट विल फीचर इन द मास्टर्स सेक्शन कैटेगरी ए ऑफ द 361 मास्टर्स चेस टूर्नामेंट विच गॉट अंडरवे एट द एक्सपो हॉल एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई टुडे। The Masters section is the flagship event of the Rs 60 lakhs prize money 361 Global Chess Festival organized by the Indian Chess School and brings together some of the strongest players from India and around the world with an average rating of 2359. Conducted in a classical format of 9-round Swiss League, the tournament provides an ideal platform for players to compete for rating points.
2: Arabad. महिला विश्व कप की महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब अपने पहले T20 विश्व कप खिताब पर होगी। भारतीय महिला क्रिकेट में जब भी बड़े मैचों और बड़े मौकों की बात होती है तो एक नाम लगातार चर्चा में रहता है, जेमिमा रॉड्रिक्स। एक

0: दिवसीय विश्व कप की तरह ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को इस T20 विश्व कप में भी जेमिमा से उम्मीदें होंगी।
1: हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स ने दबाव भरे मुकाबलों में खुद को भारत की मध्यम क्रम की रीढ़ के रूप में स्थापित किया है। उनके करियर का सबसे यादगार अध्याय ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक पारी रही। उस मैच में भारत ने 339 रन का लक्ष्य हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली और भारत की अब तक की सबसे बड़ी रन चेज की नींव रखी। इस पारी में उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया बल्कि दबाव में मानसिक मजबूती का भी शानदार उदाहरण पेश किया।
2: I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and he fought for me.
1: इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मंचों पर उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है। 2022 महिला विश्व कप में भले ही भारत खिताब तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उस दौर से जेमिमा के खेल में निरंतरता और परिपक्वता दिखने लगी थी। उसी दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उपयोगी पारियां खेलकर ये संकेत दे दिया था कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी बन सकती हैं। हाल के वर्षों में उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास में लगातार सुधार देखने को मिला है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उन्होंने कई बार मध्य क्रम में आकर पारी को संभाला और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाए। 2025 के विश्व कप अभियान में उनका योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने दबाव में टीम को स्थिरता देने का काम भी किया। अब जब भारत आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की तैयारी कर रहा है टीम की उम्मीदें एक बार फिर जेमिमा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी है। हाल ही में उन्होंने भी माना है कि पिछले एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है और अब भारतीय टीम हर बड़े मुकाबले में जीत का दावा करने की मानसिकता के साथ उतर रही है।
2: I think what happened about winning that World Cup is everyone was a part of it. Everyone knows what pressure is like. But at the same time, everyone knows that, okay, we have crossed the line once. We can do it again. And that rubs off, that belief. You know, a lot of times we visualized it so much, but now we've lived it. So it helps us believe even more that we can do it again.
0: और अब बात तीरंदाजी की। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे

0: आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति

0: माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंक के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर

0: किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के

0: भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने आप किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान हिंदुस्तान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
0: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर आप देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, आप हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो

0: यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड एग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी एग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी। देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी ज्वाइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो

0: आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है, हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भारत ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए

0: इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया है और अब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: is for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometres with 5 stations. Mr. Vaishnav said upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometres, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved 2 major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme, with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fibre, MMF apparel, MMF fabrics and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 enhanced capability global navigation satellite system jammers for the Indian Navy, with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. India has condemned the attack on the commercial vessel Setebello off the coast of Oman today. External Affairs Ministry said in a statement that of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued so far and 3 Indians are reportedly missing. It informed that the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। दुनिया भर से श्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई संदेश आ रहे हैं। विश्व नेताओं ने भारत की बढ़ती शक्ति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हिंसक दमन के लिए पाकिस्तानी प्रशासकों की निंदा की। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की

0: 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने समझौता करने में बहुत देर कर दी है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उधर ईरान ने कहा है कि रात भर हुए हमलों के बाद वह अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों का फिर से आकलन करेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास ईरानी ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में उसके ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि बार बार युद्ध विराम उल्लंघन के बाद ईरान अमरीका के साथ राजनयिक संबंधों पर समीक्षा करेगा। ईरान ने केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह पर हमले की खबर दी है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास और बाद में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर विस्फोटों की भी सूचना दी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष पूजा।
0: यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में आज कई लंबी दूरी के हमले किए जिनमें सैन्य और ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाया गया। यूक्रेन रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमलों में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया गया जिनमें एक सैन्य कारखाना भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दावा
0: कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के प्रशासकों की हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। संगठनों ने इंटरनेट बंद करने, अवैध गिरफ्तारियों और बल के प्रयोग का हवाला देते हुए स्थिति को गंभीर बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने वहां एक संगठन को आतंकवादी समूह घोषित करने के फैसले की निंदा करते हुए इससे संगठन की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। नासा ने अगले साल के अंत में होने वाले अपने अगले आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए 3 अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों और 1 इतालवी अंतरिक्ष यात्री के नाम घोषित किए हैं। ये मिशन स्पेसएक्स और ब्लू

ओरिजिन के चंद्रयानों का पहली बार कक्षा में परीक्षण करेगा। अमरीकी अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और रैंडी ब्रेसनिक तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतालवी अंतरिक्ष यात्री लुका परमिटानो आर्टेमिस तृतीय के चालक दल में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बुल्गारिया के सोफिया स्थित राष्ट्रीय ऐतिहासिक संग्रहालय का दौरा किया। श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने हजारों वर्ष पुरानी कलाकृतियों के महत्वपूर्ण संग्रह का अवलोकन किया। डॉ जयशंकर सोफिया की यात्रा पर हैं, जहां वे बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर से श्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई संदेश आ रहे हैं। विश्व नेताओं ने भारत की बढ़ती शक्ति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी उस मोहब्बत की जो शोर नहीं करती, बस दिल में कहीं चुपचाप रहती हैं। उस इंतजार की जिसमें शिकायत कम और अपनापन ज्यादा होता है, और उन यादों की जो कभी मुस्कुरा देती हैं तो कभी आंखों को थोड़ा नम भी कर जाती हैं। तो आइए इस खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं इन खूबसूरत गीतों के साथ।

दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि मोहब्बत अक्सर तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब कोई हमारे पास नहीं होता। कभी कभी एक ही शहर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत अगर सच में हो तो आवाजें नहीं बल्कि एहसास काम करते हैं। किसी की आदत, किसी की

दोस्तों, आपने गौर किया है कि इंतजार मोहब्बत का सबसे खामोश इम्तिहान होता है, जिसमें कोई घंटी नहीं बजती, कोई तारीख तय नहीं होती, बस एक यकीन होता है कि शायद किसी मोड़ पर, किसी रोज, किसी शाम या फिर किसी रात वो आवाज फिर सुनाई देगी। और यही उम्मीद दिल को टूटने से बचा लेती है। एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है कि मोहब्बत में सबसे मुश्किल काम किसी को भूलना नहीं, बल्कि उसे याद रखते हुए मुस्कुराना होता है।

दूरी अगर मोहब्बत को कम कर देती तो शायद लोग यादें नहीं संभालते। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन दिल की आदतों से नहीं जाते। सुबह की चाय में, बारिश की बूंदों में, तो कभी पुराने गीतों में, या रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, और सिर्फ जब दिल जागता है तो कहीं ना कहीं वो लोग फिर से हमारी जिंदगी में चुपके से आ जाते हैं, कोई याद बनकर या कोई खामोशी बनकर।

दोस्तों, मोहब्बत हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी किसी को दूर से खुश देख पाने का सुकून भी मोहब्बत ही होता है। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिल का भी और उन यादों का भी जो आपको थोड़ा बेहतर इंसान बनाती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगला गीत तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट

0: ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रूपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said for the first time the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: On this occasion, NDA adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Nabin said, a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Mr. Nabin said, NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that Prime Minister Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. Prime Minister Modi has expressed gratitude to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal Chancellor Friedrich Merz, Canadian Prime Minister Mark Carney and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu for their warm wishes and messages. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Roman Radev in Sofia yesterday. Dr. Jaishankar highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ अंजू लेकर आई हूं आपका प्रोग्राम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमें शहर की तरह शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ। किसी के दिल में बसना कुछ बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना कोई खता तो नहीं, गुनाह तो ये जमाने की जर में तब हो, क्या ये जमाने वाले खुदा तो नहीं।

ऐसा भी इत्तेफाक मुझे 12 हुआ, ऐसा भी इत्तेफाक मुझे 12 हुआ कि मैं उनसे मिला हूं, उनसे ही उनका पता पूछता हुआ।

यूं तो हजारों रास्ते हैं जिंदगी के सफर में, पर पता है सुकून सिर्फ तब मिलता है जब वो मेरा हाथ थाम कर कहती है कि हाँ चलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं।

समय हुआ है 12:29 और 52 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू। लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने में। जी हाँ, लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने में। तुम जैसा कोई प्यारा भी तो नहीं इस जमाने में।

ना समझ थी ना कोई तजुर्बा था हमें, ना कोई समझ थी ना कोई तजुर्बा था हमें, बस एक चेहरा देखा और उसमें ही खो गए। वो पहली मोहब्बत का जादू ही ऐसा था कि बिना कुछ कहे हम उनके दीवाने हो गए।

कुछ कहे बिना तेरा मुस्कुराना मुझे आज भी याद है। नजरें मिलते ही तेरा पलकें झुकाना आज भी याद है। छूकर गुजरी थी जो हवा मेरे मन को, उस हवा का मुझे दीवाना बनाना आज भी याद है।

तो होगा तेरे मेरे बीच में, यूं ही बिना मिले दिलों के तार नहीं छिड़ते। कुछ तो होगा तेरे मेरे बीच में, यूं ही बिना मिले दिलों के तार नहीं छिड़ते। पतझड़ में भी वक्त से पहले पत्ते शाखों से नहीं गिरते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का

दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन अल्फाज के साथ कि ये सुहाना समा और हवाओं का रुख कुछ कहता है, ये सुहाना समा और हवाओं का रुख कुछ कहता है कि हर पल इस दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है।

धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल बेकरार है। धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल बेकरार है। अब आ भी जा कि सिर्फ तेरा ही इंतजार है।

ढूंढता है दिल अब बस थोड़ी सी खामोशी, ढूंढता है दिल अब बस थोड़ी सी खामोशी, ले चलो वहां जहां बस सुकून का हो नूर।

जब तक तुम साथ हो तो कोई गम नहीं, जब तक तुम साथ हो तो कोई गम नहीं, बस दुआ है कि कहीं भटको नहीं राहों में, बस यही दुआ है मेरी।

होश में रहना अब मुमकिन नहीं हमारे लिए, होश में रहना अब मुमकिन नहीं हमारे लिए, हम तो बस जी रहे हैं इन नशीली आंखों को देखकर।

जब से देखा है तुम्हें कोई और चेहरा भाता नहीं, जब से देखा है तुम्हें कोई और चेहरा भाता नहीं, मेरी आंखों का नूर और मेरी दुनिया भी तुम्हारे ही बीच समाई।

तेरे बगैर सूनी पड़ी है ये राहें और खामोश है ये दिल। तेरे बगैर सूनी पड़ी है ये राहें और खामोश है ये दिल। तुम्हें नहीं पता कि तुमसे ही महकेगा मेरा घर आंगन और हर एक महफिल।

जमाने से छुपा कर दिल में बसाया है तुम्हें, जमाने से छुपा कर दिल में बसाया है तुम्हें, एक बार देखो तो सही कि हम भी तुम्हारे प्यार के काबिल हैं।

सारा जहां भूल बैठे हम उस एक ही पल में, सारा जहां भूल बैठे हम एक उस एक ही पल में कि बस इतना ही याद है कि तुमसे निगाहें मिली थीं।

अभी कुछ ही समय में होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Navin said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes the India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney, and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised him. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The Defence Ministry has signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy. The project will have a minimum indigenous content of 75%. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Bulgaria's Prime Minister Roman Radev in Sofia yesterday. Dr. Jayashankar highlighted India's strong bilateral ties with Bulgaria and the opportunities arising from the growing India-Bulgaria strategic partnership. He also stressed the need for closer cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile global environment. He will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. Indian Railways has launched nationwide fire safety audits at railway stations to strengthen passenger safety. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas for improvement and to better protect passengers and railway assets. The Railway Ministry has said the audit will cover key infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. The Union Ministry of Tribal Affairs, through the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, has launched RISA Timeless Tribal, a premium brand dedicated to tribal textiles, embroideries and handicrafts, along with an exclusive RISA store in New Delhi. Tribal Affairs Secretary Ranjanath Chopra said the initiative aims to preserve and promote India's tribal heritage through sustainable livelihoods and better market access. In a major operation against drug trafficking, a joint team of Haryana and Rajasthan police has seized around 88 kilograms, 970 grams of opium, valued at approximately 4.5 crore rupees in the international market. A truck driver has been arrested in connection with the case. Haryana Director General of Police Ajay Singhal said the operation reflects the state police's continued efforts under Chief Minister Nayab Singh Saini's leadership to achieve the goal of a drug-free Haryana and a drug-free India. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma have advanced to the second round of women's singles event at the Australian Open in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76 Inés Castillo 21-13, 21-11 in the first round. She will next face compatriot and world number 39 Isha Rani Barua in the pre-quarter finals. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों समय हुआ है 2:11:03 और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से आपके साथ साथ निभाने आ गई हूँ। अंजू बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और इस घंटे रहेंगे बहुत ही मधुर गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आंखों को नींद नहीं और दिल को करार नहीं, आंखों को नींद नहीं और दिल को करार नहीं, तुम इस कदर याद आकर हमें बहुत बेचैन करते हो।

पन्ने खुलते हैं जब भी इश्क और वफा के, पन्ने खुलते हैं जब भी इश्क और वफा के, और जब जिक्र मोहब्बत का होता है, यकीन मानो तुम बहुत याद

कुछ कहते हैं हमसे कि अभी उम्र देखकर थोड़ी ही होती है ये मोहब्बत, अब इस नादान दिल को कौन समझाए कि अभी प्यार की उम्र नहीं है तुम्हारी।

दोस्तों रात सुरमई सुन रहे हैं आप और 2:31:19 अंजू है आपके साथ और ये सफर अभी और आधे घंटे का है। रहे मेरे साथ।

सजा ली है मैंने अपनी एक नई दुनिया उनके ख्यालों में, सजा ली है मैंने अपनी एक नई दुनिया उनके ख्यालों में। सुन माँ, सब छोड़ कर जाने को मन भागे है पिया की गलियों में।

कुछ इस कदर खोए रहते हैं हम तुम्हारी यादों में, कुछ इस कदर खोए रहते हैं हम तुम्हारी यादों में कि तुम्हारे बिना अब कोई नाम हमें याद ही नहीं रहता।

तुम देख लेना, चाहे बदल जाए ये सारा जहां, पर मेरा प्यार कभी ना बदलेगा। अब तेरे बिना जीना नहीं, और मरते दम तक और दिल धड़कने तक बस ही बस तुम्हारा ही रहेगा।

चलिए इनके गिले शिकवे तो चलते रहेंगे और अब हमारे भी चलने का वक्त आ गया है क्योंकि अर्चित पांडे आ गए हैं स्टूडियो में और कह रहे हैं भी अब जल्दी से सीट खाली करो। तो भाई मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगे अर्जित पांडे हम रहे लेकर 3:10 पर। आपसे भी कुमार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रूपये के नाममात्र वार्षिक किराये पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मेरे यानी अर्चित के साथ।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, आज के इस प्यारे से गीत जिसके बोल है तुझे देखा तुझे चाहा।

मोहम्मद रफ़ी जी और सुमन जी की आवाज़ में तुझे देखा तुझे चाहा। मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

तुमसे ओ हसीना एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। कोई अच्छा या बुरा हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही लगता है। कोई अच्छा या बुरा हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें जरूरत है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा, और अगर हमें जरूरत ना हो तो वही बुरा लगता है। क्योंकि सूरज तो एक ही होता है, जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में कुछ कम अच्छा लगता है। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम। और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:36 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनो।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

कोई हो ना हो मेरे पास, कोई हो ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्त यानी अर्चित के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

आशा भोसले जी की आवाज में हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। 3:49 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, बाकी का तो नहीं पता, हम आपसे जरूर मिलते रहेंगे। किसी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। किसी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए तो कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:55 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

0: गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, जिसे लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त।

कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल है, जाइए आप कहाँ जाएंगे।

कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह बेकार नहीं होती है। बेकार से बेकार चीज भी कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। घड़ी चाहे बंद ही क्यों न पड़ी हो, घड़ी चाहे बंद ही क्यों न पड़ी हो, सारा दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। 4:25 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसको ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो घमंड न करना, जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो घमंड न करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना। 4:31 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम

0: रुनिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ ज़्यादा।

किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही अच्छा सा गीत अभी अभी आपने सुना। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:37 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पे बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटिंग में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

किशोर कुमार जी की आवाज में गाता रहे मेरा दिल। कोशिश यही कीजिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, कोशिश यही कीजिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 4:44 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखिए। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखिए। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:55 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को

0: महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रूपये के नाम मात्र वार्षिक किराये पर 30 वर्षो के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. BJP President Nitin Naban has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naban said, NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naban said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ, समझो जरा कहती है क्या।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

हटेगी धुंध तब सवेरा खिल कर आएगा, हटेगी धुंध तब सवेरा खिल कर आएगा, कोहरा चाहे कितना भी गहरा हो, धूप आने पर छट ही जाएगा। निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, धीरे धीरे तैरते हुए किनारा मिल ही जाएगा। 5:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:29 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।